0: થોડી જ વારમાં સાંભળશો હિન્દીમાં સમાચાર.
1: लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है. विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था. उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया. श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी. भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की. दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और

0: भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारत।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, लेकिन हम ये है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षेप में विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 270। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा। श्रृंखला सुनिएगा वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी आज। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। पर 8:15 पर त्रिवेणी। 8:30 से सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पार्श्व गायक किशोर कुमार पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 पिटारा में सेहतनामा। इसके अंतर्गत नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहयोग रीमा जोशी। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। ग्यारह बजे रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 से सखी सहेली। सखी सहेली के अंतर्गत सुनेगा अफवाहों से सावधान रहें सखी विशेष मालिका सदानी। हल्की फुल्की बातें बचपन की यादगार शरारत मुहावरों की दुनिया 1 से 21 होना। संवादक मंदाकिनी जोशी आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन शाम सुनिएगा। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम।

बजे से फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। हवा महल में रात 8 बजे झलकी ये न थी हमारी किस्मत। लेखन सत्यदेव नारायण सिन्हा, निर्देशक सीताराम यादव। 8:15 रात चित्रलोक सुनिएगा और 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पार्श्व गायक किशोर कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

बालीवध का प्रसंग पार्वती को सुनाते हुए शिव जी कहते हैं, श्री राम समस्त प्राणियों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। राम के आदेश पर सुग्रीव ने भाई का राज्य पाया और बाली पुत्र को युवराज घोषित किया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 270।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

प्रस्तुत है श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा।

0: वर्षा चौमासा श्रृंखला की आज की ये चौथी कड़ी है। शुभा जी हमारे साथ हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मेरी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से और समग्र श्रोताओं की ओर से, आज हम किस राग का हम मतलब मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूं, इसलिए हम बाकी सब तो आप ही बता रही हैं और आप ही जानती भी हैं और समझाएंगी भी हमें, किस राग का चयन कर रहे हैं?
1: अब तक हमने राग शुद्ध मल्हार और मेघ और गौड़ मल्हार के बारे में कुछ चर्चा की, लेकिन एक बहुत ही बहुचर्चित, लोकप्रिय, जाना माना एक मल्हार का प्रकार है जो जिसके विषय में हमने अभी तक कुछ नहीं कहा, बल्कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि शायद यही रागांग है, उसे मियां मल्हार कहा जाता है।
0: जी, मियां की मल्हार भी कहते हैं।
1: मियां की मल्हार भी कहते हैं और कहा जाता है कि तानसेन जी द्वारा ये रचित
0: मियां तानसेन जी।
1: तो मियां मल्हार के विषय में हमने कुछ नहीं कहा, हालांकि ये बहुत ही लोकप्रिय है और इसमें इसकी विशेषता जो है, मतलब ऐसा लगता है कई बार कि इसमें जो दोनों निषाद लगते हैं वो ही मल्हार का एक प्रतीक बन गए हैं। यदि किसी ने न सीखा हो या केवल सुन सुन के जानकारी हासिल की हो तो शुद्ध मल्हार के जगह ये भी मान सकते हैं कि अगर दोनों निषाद लगाने का जो एक विशेष इसमें जो स्वर संगति है वही शायद मल्हार का प्रतीक बन जाता
0: जी, और वही मल्हार का रूप है
1: जी,
0: असली रूप है
1: जी। तो काफी थाट जन्य ये राग है और इसमें कहा जाता है कि मल्हार का एक अंश मिलता है और कान्हड़ा का भी मिश्रण इसमें मिलता है और फिर तो वो जो दोनों निषाद लगाने की एक विशेष परंपरा है वो भी उसमें मिलती है
0: जी।
1: इसमें भी मैंने आपके लिए दो रचनाएं चुनी हैं जिनका साहित्य मुझे बेहद पसंद है।
0: लेकिन शुभा जी, थोड़ा सा राग, ये जो मियां मल्हार या मियां की मल्हार है उसका थोड़ा चलन भी तो आप बताइए, समझाइए, ताकि आप जिससे कह रही हैं कि ये काफी थाट का राग है और शुद्ध मल्हार के बारे में आपने कहा था कि वो बिलावल थाट का
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो ये भी तो कुछ फर्क है
1: जी।
0: और ये फर्क हमारे श्रोता भी समझे
1: जी,
0: तो
1: जरूर वो गाने से ही पता चल जाएगा। तो

0: वाह वाह, ये आरोह अवरोह सुनकर मुझे, चूंकि एक सर्वसामान्य श्रोता के मन की बात है जो मेरे मन की बात है, बोल रे पपीहरा जो गाना है
1: जी,
0: वो मुझे याद आया
1: जी,
0: वो इसी राग में निबद्ध है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हम अभी आपकी बंदिशें सुनेंगे जो आपने जिक्र किया कि दो बंदिशें सुनाऊंगी।
1: तो ये दोनों ही बंदिशें पंडित रामाश्रय झा जी की हैं
0: जी,
1: और जो धीमे तीन ताल में बंदिश है उसके बोल इस प्रकार हैं। तू क्यों मान करे रे बदरा, तो नायिका पूछ रही है बादल से कि किस बात का अभिमान है तुझे। तू क्यों मान करे रे बदरा, मो बिरहिन नैन के आगे, मतलब तू देख रहा है कि मेरे बिरही नैन कितना बरस रहे हैं फिर भी तू अभिमान कर रहा है, तो क्या जरूरत है तुझे अभी इतना मान करने की। तू बरसे रुत पावस आए, तू तो तभी बरसता है जब पावस ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है। राम रंग मेरो नैन दिन रैन झरे।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: वियोग की का साहित्य है और उसमें कितना कितनी सुंदर उलाहना दी है बादल को कि किस बात का तुम्हें अभिमान है, मेरे नैन तो दिन रैन झरते हैं, तुम तो केवल इस वर्षा ऋतु में बरसते हो।
0: जी, आपने बात करते हुए कहा कि धीमे धीमे तीन ताल में
1: जी,
0: तो वो कैसा होगा धीमा तीन ताल, मतलब
1: गति का एक विशेष संबंध है संगीत के साथ। और उससे मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि यही बंदिश यदि हम बढ़ी लय में या तेज गा दें तो उसमें जो भाव है वो शायद एकदम नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। तो अब आपको हम बताते हैं कि देखिए गति से क्या क्या मजा भी आ सकता है और क्या कहर भी ढा सकता है।

0: अब दूसरी बंदिश के बारे में
1: जी। ये एक ताल में निबद्ध है, 12 मात्रा का ये ताल है और मियां मल्हार में तो स्वाभाविक है कि उसी में गुरुजी ने बनाई है ये रचना। और बोल इस प्रकार हैं, बदरिया आई रे गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंके जागी से जरिया। के जो शब्द हैं, जो साहित्य है, उनको एक ही ढंग से लगाना पड़ता है। बाद में आप उसका उसकी बढ़त कर सकते हैं, लेकिन उसे सजाने के लिए ताकि वो गहने की तरह गढ़ा हुआ लगे, तो वो शब्द आप देखेंगे कि कैसे वो गढ़े गए हैं। बदरिया आई रे गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंके जागी सेजरिया। बिजली देख के जो नायिका है वो चौंक गई सेज से। पवन की झकझोर बूंद झमाझम किशोर, राम रंग अटा झरे भीगी अमोल चुनरिया।

0: श्रोता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वनियांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

फरे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी थे, संगीतकार अनिल विश्वास। आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं, हम नमन कर रहे हैं पार्श्व गायक किशोर कुमार को। लीजिए अब सुनिए फंटूश फिल्म का ये गाना जिसे किशोर कुमार ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और एस टी बर्मन ने तर्स बनाई है।

0: कमाल लटके।
1: किशोर कुमार की आवाज में लीजिए अब सुने न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना। शैलेंद्र ने गीत लिखे हैं और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है।
2: अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। दुनिया की रौनक देख।

0: शरीर की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, किक किक किक किक, ट्रेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें किशोर कुमार और साथियों की थी। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था। आज सुरों के जादूगर महान पार्श्व गायक किशोर कुमार की जयंती है, उनकी आवाज को सादर नमन। सुनते हैं अधिकार फिल्म में गीत।

0: की पगड़ी, उसके सर पे दुनिया गोरख धंधा, गुरु घंटाल सभी से कहते झपट के डालो फंदा। नमक मिर्ची गरम मसाला, कपड़े वाला जूते वाला, सब में है गड़बड़ घोटाला, दूध में पानी दवा में पानी, सब में रगड़म रगड़ा, कमरा है तो पगड़ी और पगड़ी है तो पगड़ा, हाँ पंजा छक्का सट्टा अट्टा, पैसे की है लट्ठम लट्ठा, पैसा बनाए भैया भाभी चाची और चाचा जी।
1: किशोर कुमार की आवाज में ये अधिकार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। संगीतकार थे अनिल विश्वास।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
2: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की,
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कसूर आपका हुजूर।

left, right, left, right, right turn. Left, right, about turn.

0: बहार फिल्म का गाना आप किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे। इसी गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता,
2: अब सिर्फ 10 रुपए के सैशे पैक में भी।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मशहूरों में जान तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: है राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, सविता सिंह का।
1: सोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

प्रेम पुजारी फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। नीरज ने इस गीत को लिखा था और एसटी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। किशोर कुमार की आवाज में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार की गायकी में सौंदर्य भाव ऊर्जा शरारत और संवेदना का ये अनूठा संगम जो बरबस ही दिलों को खींच लेते हैं आकर्षित करते हैं। उनकी जयंती पर इस अनूठी आवाज को सादर नमन के साथ सुनते हैं ये गीत।

0: कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

0: ત્રિશુલ ફિલ્મનું ગીત આપ સાંભળી રહ્યા હતા. વડોદરા વિવિધ ભારતી પરથી થોડી જ વારમાં સાંભળશો હિન્દીમાં સમાચાર.
1: સાત સાત હજાર રૂપિયા કા બિજલી બિલ ભી આને લગા. વાઇફ કબ સે બોલ રહી હૈ સોલર પેનલ લગવાને કે લિયે. બોલતી હૈ સરકાર સબસિડી ભી દે રહી હૈ. મેને જિનકો પૂછા સબકા બિજલી બિલ ઝીરો આ રહા હૈ. ઇસ બાર તો લગવા હી દેતા હું. જબ બિજલી મુફ્ત મિલતી હૈ તો લે ક્યું નહીં રહે ભાઈ. આપ ભી લગવા હી દો. પીએમ સૂર્ય ઘર મુફ્ત બિજલી યોજના જુડને કે લિયે રજિસ્ટર કરે PM સૂર્ય ઘર.gov.in.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. और अब मुख्य समाचार. संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की. एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका. ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया. और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे. और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं. सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की. बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है.
4: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए. महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है. भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं. इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी.
3: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी. इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है. पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था. एक रिपोर्ट.
5: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी. प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके. अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी. समाचार

0: कक्ष से मैं चाहत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस के दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन क्या है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सर

0: फिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुंड बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमी परिस्थितियों का प्रभाव असम के कचार, दिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं। छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट, डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

के लिए त्रिवेणी में आपका स्वागत है। तो आज बातें माँ की। जैसे ही माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे सामने एक ममतामयी मूरत आ जाती है, एक ऐसा रिश्ता जिसको हमने भगवान का दर्जा दिया है, इतने ऊपर स्थापित कर दिया है कि उनसे कभी इंसानों वाली गलतियों की अपेक्षा ही नहीं की जाती। माँ यानी जैसे बच्चे के हंसने, रोने, खाने पीने, डरने, सोने जागने और पूरे दिलो दिमाग का पता होना चाहिए। माँ कभी इस मामले में गलत हो ही नहीं सकती, और अगर वो कभी बच्चे की भावना को ना समझ पाए तो मानो कहर ही टूट पड़ता है, क्योंकि माँ को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, है ना?

माओं पर बच्चों को पूरी तरह जानने का ऐसा दबाव होता है कि माँ खुद को माँ कम बच्चों के पीछे लगा सीआईडी एजेंट ज्यादा समझने लगती है। ऐसा हो भी क्यों ना, बच्चे की हर गलती या आहत भावनाओं के लिए माँ ही जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। वहीं अगर बच्चा कोई बात न मानता दिखे तो भी अधिकांश मामलों में माँ ही उसे बिगाड़ने की जिम्मेदार समझी जाती है। इस दबाव का नतीजा ही है कि माएं बच्चों की हर गतिविधि पर किसी जासूस की तरह नजर रखना अपना धर्म समझती हैं। फिर बच्चे के दोस्तों के नाम हो, उनके घर का पता हो या बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट, बच्चे के टिफिन, बोतल, बैग, कपड़े और उनकी पूरी जिंदगी ही माँ की नजरों के स्कैनर से होकर गुजरती है। एक उम्र तक तो ये सब ठीक भी लगता है, लेकिन जब बच्चे युवा हों तब यही बातें उन्हें परेशान करने लगती हैं। इस तरह बच्चों की जिंदगी में मंडराते रहने वाली माओं को हेलीकॉप्टर मॉम की उपाधि भी दी गई है।

बच्चों की जिंदगी में पेरेंट्स की ज्यादा दखल बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करती है। लेकिन यहाँ समझना ये है कि माओं को हर बात पता होने के दबाव ही अक्सर उन्हें इस तरह दखल देते रहने के लिए प्रेरित करता है। पर सामाजिक ढांचे में इन दिनों बदलाव भी हुआ है। कामकाजी जोड़े होने के कारण इन दिनों घर के पुरुष भी हर काम में हाथ बटाते हैं और कहीं कहीं तो पिता भी अब सामाजिक रूप से तय माँ की भूमिका में अपना हिस्सा निभाते हैं। वो बच्चों को नहलाना, डायपर बदलना, उनकी सफाई करना, घूमना फिर से वो बच्चों को नहलाना, डायपर बदलना, सफाई करना, घुमाना, खिलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, टिफिन बना देना जैसे कई काम उनके लिए करते हैं। कहना ही होगा कि इस तरह से परिवार में अभिभावकों का आपस में मिलकर काम करना दोनों को ही बच्चों के करीब लाता है। बच्चा भी परिवार में अपने माता पिता को एक टीम की तरह काम करते देख दोनों के साथ समान रूप से जुड़ता है और पिता से केवल डरने या उनका सम्मान करते रहने की बजाय गले लगने और अपने दिल की बात कहने का हौसला भी पाता है। कहीं न कहीं पिता में भी अब उन्हें माँ की तरह की सहजता मिल रही है।

घर के सदस्य एक टीम बन जाएं, तो जीवन का खेल भी आसान हो जाता है। इसी संदेश के साथ दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
0: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत। आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का

0: मधुश्री, चिन्मयी, अंचल सेठी और वैशाली की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में ये गीत।

0: सत्यमेव जयते टू फिल्म का गाना आपने सुना, आवाजें जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की थी। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा और संगीतकार थे रोचक कोहली।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: बागी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की। कुमार ने इस गीत को लिखा था और मीत ब्रदर्स ने धुन बनाई थी।
1: आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सब कुशल मंगल। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें सोनू कक्कड़ और वंदना सक्सेना की थी, समीर अंजान के बोल थे। और इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने लिया था फिल्म किसी का भाई किसी की जान से, कमल खान और पलक मुछाल की आवाजों में। वो गीत आपने सुना था शब्बीर अहमद के बोल थे, चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तो लिया जाए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपको सुनाएंगे गाने।
1: विविध भारती नू वडोदरा केंद्र आप सांभळी रह्या छो। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स टाइम अत्यारे सवारना 9:55 थई छे। शुकर नू सोनू तो सारा गणदेवीकर नू ज, सारा नू सोनू सुख शांति अने समृद्धि नू सोनू। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स दांडिया बजार अने वाघोड़िया रोड वडोदरा।
2: બ્રો, લગ્નની શોપિંગ થઈ?
3: હા, વરસાદમાં.
2: યસ, અને એ પણ પૂજા પ્લસ સાથે ડિઝાઇનર અને સ્પેશિયલ વેડિંગ કલેક્શન પર છે અપ ટુ 50% ઓફ. વિઝિટ પૂજા પ્લસ નવરન સિનેમા રોડ રાવપુરા વડોદરા.
4: હર રોજ સુબહ 7 સુનિયે કાર્યક્રમ ભૂલે બિસરે ગીત, જિસકે પ્રાયોજક હૈ વીકો વજ્રદંતી, મઝેદાર નહીં અસરદાર ભારત કા ગમ એક્સપર્ટ।
0: मैं सुनवा रहे हैं अरमान खान की आवाज में हक फिल्म का ये गाना।

0: अरमान खान और साथियों की आवाजों में हक फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया कौशल किशोर ने और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज पार्श्व गायक किशोर कुमार की जन्मतिथि है। महान गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। किशोर कुमार ने हिंदी के साथ साथ बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी और कई भाषाओं में गीत गाए। अपनी अनूठी गायकी, चंचल अंदाज और बहुमुखी प्रतिभा से करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक किशोर कुमार पर। आज के फनकार कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:30 और सुबह 9:30।
1: मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: रेखा भारद्वाज की आवाज में गुलजार का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था डेढ़ इश्किया और इस गीत को संगीत से संवारा था विशाल भारद्वाज ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

पटाखा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज थी। गुलजार के बोल थे विशाल भारद्वाज का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक और बहुत छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। साथियों, आज भारतीय सिनेमा के ऐसे बहुमुखी रचनाकार का जन्मदिन है जिन्होंने निर्देशन, पटकथा लेखन, संगीत निर्देशन और फिल्म निर्माण हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई। विशाल भारद्वाज का जन्म 4 अगस्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शिकारपुर ग्राम में हुआ था। विशाल भारद्वाज ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत संगीतकार के रूप में की थी, लेकिन एक निर्देशक के रूप में एक अलग पहचान बनाई। मकबूल, ओमकारा, कमीने, हैदर और पटाखा जैसी फिल्मों ने उन्हें देश विदेश में विशेष सम्मान दिलाया। उन्हें गॉडमदर और इश्किया के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके स्वस्थ, सफल और सृजनशील जीवन की मंगल कामना करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से फिल्मकार, संगीतकार विशाल भारद्वाज को जन्मदिन की अनेकों नेक शुभकामनाएं देते हैं। एक और गाना आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें। ओमकारा फिल्म का ये गीत सुनिए। गुलजार के बोल हैं, विशाल भारद्वाज का संगीत है।

विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में रेखा भारद्वाज और साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार ने इस गीत को लिखा था, ओंकारा फिल्म का गीत आपने अभी सुना। और अब लीजिए सुनिए शशि डीजे खुशी की आवाज में लक्ष्मी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं गगन आहूजा और संगीतकार हैं शशि डीजे खुशी।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। आपका हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ सकुशल और समृद्ध रहें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोर दा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोर दा अपने आप में अभिनय और गायन की

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलील दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

किशोरदा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: बात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये

खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर दा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना, फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं: दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हर फन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए। हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: वो गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।
3: जिंदगी का सफर।

किशोरदा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोरदा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोरदा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: कोई लौटा दे।
1: श्रोताओ, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
2: आज के फनकार।

0: क्या आप जानती हैं सबसे बड़ा खतरा इस बात का नहीं है हमें कि हम में कम शक्ति है, खतरा तो यह है कि हमारी शक्ति अपार है। आज करते हैं नारी शक्ति को वंदन। आइए मनाते हैं सिंगल वर्किंग वुमन्स डे।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पायल शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो विविध भारती। आइए सुनते हैं आपके दिलों की बातें आपके पसंदीदा गीतों के साथ। आ रहा है आज का पहला फोन कॉल। हेलो विविध भारती।
0: हेलो विविध भारती,
2: मैं रेखा राज बोल रही हूँ बड़ौदा से।
0: जी रेखा जी, कैसी हैं आप?
2: बस मस्त।
0: ये आपका नाम इतना यूनिक कैसे है, रेखा और राज?
2: मेरी सरनेम राज है।
0: ओहो हाँ। सोने पे सुहागा हो गया ये तो, रेखा के साथ राज लग गया। जी बताइए आप हाँ। क्या करती हैं?
2: मैं हाउसवाइफ हूँ और टिफिन सर्विस चलाती हूँ।
0: बस यही बात जाननी थी, आप तो पूरे घर का परिवार का बोझ अपने सिर पर लेकर चलती हैं और सबकी ख्वाहिशें पूरी करती हैं, इतना सारा काम करती हैं।
2: हाँ,
0: समाज को कितना हेल्प मिलता है कि आप घर का खाना
2: अच्छा,
0: हाँ घर का खाना सबको भेजती हैं जो बैठकर ऑफिसेज में आपके खाने खाते हैं, और फिर उनको ताकत भी मिलती है उससे और हाँ, अच्छा काम करने के लिए। तो हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है।
2: मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, सबको अच्छा अच्छा बना के खिलाने का।
0: फिर तारीफ में मैसेज आते हैं कि मैडम आज का खाना बहुत ही टेस्टी था।
2: हाँ, आता है।
0: बढ़िया बढ़िया। तो आज ना सिंगल वर्किंग वुमन डे है, मतलब वो बहनें जो घर से बाहर निकलकर या घर पर भी रहकर मेहनत करती हैं, परिवार का बोझ उठाती हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करती हैं।
2: जी
0: इस वक्त तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ और शुक्रगुजार हैं हम सारे जो आप जैसी स्त्रियां आगे बढ़कर समाज को ताकतवर बनाने के लिए मेहनत करती हैं।
2: हाँ, मुझे कुछ करना है लेकिन मुझे मतलब आइडिया नहीं आ रहा है, तो बस ये टिफिन सर्विस चला के अभी तो कर रही हूँ।
0: आप बहुत कुछ कर रही हैं, आपको आइडिया ही नहीं है कि आप कितने लोगों की हेल्थ को संभाल रही हैं, है ना?
2: हाँ।
0: जी तो आप बताइए आज कौन सा गाना सुनेंगी?
2: तो अभी मेरे जमाई का बर्थडे 29 को आ रहा है, तो बर्थडे के हिसाब से ही कोई गाना दे दीजिए।
0: हाँ लेकिन ये जो आपका कॉल है वो थोड़ा अगस्त में बजेगा, तो हम उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहेंगे।
2: हाँ, और ना मैं मतलब पिछली बार भी मैं मतलब इतनी खुश हो गई थी कि मैं सबका नाम लेना भूल गई थी,
0: तो इस बार ले लीजिए।
2: तो नाम ले सकती हूँ?
0: बिल्कुल।
2: हाँ, तो मेरी तीन बेटी है, एक पहली है उसका नाम वैदेही है, दूसरी का कृष्णा है, तीसरी का सिया है, और चौथा मेरा बेटा है उसका नाम पृथ्वी है। मेरा नाम तो आपने जान लिया, रेखा
0: जी, रेखा।
2: मेरे हस्बैंड का नाम प्रदीप है
0: जी,
2: और मेरा भाई मेरे साथ में रहता है उसका नाम विक्रम है, और एक भाई मेरा एक्सपायर हो गया, अभी 6 महीना हुआ है।
0: अरे दुख हुआ आपकी बात सुनकर।
2: हाँ,
0: खैर जीवन चलने का नाम ऐसा हमें सिखाया जाता है, और यही गाने हाँ, भी हम सुनते हैं, है ना?
2: हाँ, वो तो है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कब आएगा, क्योंकि पहली बार जब मेरा आया ना तो मतलब सबको इतना मतलब वो था कि सुन

0: थे, अकॉर्डिंग तो घर में कोई नहीं था और मैं भी वॉशरूम में थी और गाना बज गया.
1: अरे यू मिस्ड इट.
0: मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया है दो,
1: जी.
0: तो मतलब वो बोल रही थी मम्मी रिकॉर्डिंग करके रखना, तो मतलब पास में कोई नहीं था तो मिस हो गया मुझसे.
1: ध्यान रखिए और आपको सुनना तो रोज ही है.
0: हाँ नहीं मतलब सुबह जितने बजे मैं उठती हूँ पूरा दिन, रात को जब मैं सोने जाती हूँ तब मेरा रेडियो बंद होता है. मुझे बहुत शौक है, खाना बनाती रहती हूँ, गाना सुनती रहती हूँ और गाना सुनते सुनते खाना बनाने में मुझे बहुत मजा आता है.
1: तो आप सबको बता दीजिए कि जो इतना टेस्टी खाना खा रहा है सिर्फ विविध भारती की वजह से खा रहा है.
0: हाँ सही है,
1: ठीक है जी.
0: मुझे बहुत खुशी हुई. मैं मतलब बचपन से सुन रही हूँ, मेरा बहुत बहुत सालों से इच्छा था कि मेरा फोन लगे लगे, सबका लगता है मेरा नहीं लग रहा है तो बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अभी दूसरी बार भी लग गया तो मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू विविध भारती को और आपको भी.
1: थैंक यू सो मच. इसी तरह टेस्टी टेस्टी खाने बनाते रहे और गाने सुनते रहे. आ रहा है
0: और पहली बार भी जब मैंने मेरे मंदिर में भगवान की सेवा कर रही थी और फोन लगाया और अभी दूसरी ही कॉल लगाया और मेरा फोन लग गया, तो मैं बहुत खुश हूँ.
1: भगवान को भी थैंक यू बोलता है.
0: भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, थैंक यू भगवान.
1: ठीक है रेखा राज जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत. नमस्कार.
0: नमस्कार. थैंक यू.

0: हेलो विविध भारती।
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग,
0: कैसे हैं आप?
1: बस बस बस बढ़िया है पायल बहन।
0: हाँ जी बोलिए।
1: अरे मैं तो खाली टेस्टिंग के लिए वो रिकॉर्डिंग चालू हो गई।
0: हाँ जी,
1: थैंक यू। आज है तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो

0: हो तुम आँखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सहारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे। बढ़िया गाना,
1: बहुत ही बढ़िया गाना है।
0: विविध भारती के श्रोताओं को भी खुश कर देते हैं आज।
1: बिल्कुल, लेकिन श्रोताओं को आप अपना परिचय तो दीजिए।
0: जतिन भाई,
1: आपकी आवाज सब पहचान रहे, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में कुछ बताइए।
0: मैं क्या बताऊं पायलबेन
1: जी,
0: मैं संगीत का दीवाना हूं
1: जी,
0: और संगीत मुझे परोस रही है विविध भारती
1: जी,
0: इसलिए विविध भारती का भी दीवाना हूं
1: जी। जी, उत्पल दत्त के मूवीज देखी है आपने?
0: हाँ हाँ, उत्पल दत्त, वाह वाह वाह, उत्पल दत्त की तो क्या बात, क्या कॉमेडी करते हैं,
1: गोलमाल जी, है ना। तो आपको याद
0: है? बढ़िया, मुझे वो कलाकार बहुत अच्छे लगते हैं। वो कितनी बड़ी उम्र के बाद आए फिल्म इंडस्ट्री में
1: जी,
0: तो अभी अपना निशान छोड़ के गए।
1: बिल्कुल,
0: और उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी।
1: ऐसा है?
0: उन्होंने कितना हिंदी नहीं आती थी तो भी वो हिंदी फिल्मों में काम किया और कितना बढ़िया उच्चारण करते थे।
1: मुझे उनका एक डायलॉग बहुत अच्छे से याद रह गया है और बहुत बहुत अच्छा।

0: लगता है मुझे, वो
1: आगरे
0: आपको
1: का
0: अगर या
1: पैठा,
0: हाँ, और वो बोलते थे उल्लू का पट्ठा।
1: उल्लू का पटा, सही बात
0: वो क्या है कि एक दिन हम मनाते हैं जिसको कहते हैं इंटरनेशनल ऑल अवेयरनेस डे, जिसमें हम उल्लू जो ये प्रजाति है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जागरूकता फैलाते हैं, है ना। तो
1: बात
0: आज वो दिन है, तो मुझे
1: है। अच्छा
0: उत्पल
1: अच्छा
0: दत्त साहब की याद आ गई। ये तो बात निकली है कि इस दिन को हम मना रहे हैं और जागरूकता फैलाते हैं कि जो लुप्त
1: हाँ,
0: हो रही है ये प्रजाति, उसके लिए हम कुछ करें, उनको बचाएं।
1: बहुत सारी चीजें लुप्त हो रही है। ये मुझे एक आदमी ने बताया था और मुझे उसकी बात इतनी बहुत अच्छी लगी। वो बोलता है सिर्फ इंसान, ह्यूमन
0: जी
1: बींग,
0: जी
1: पृथ्वी पे से हट जावे ना तो कितने जीव, जो पृथ्वी पे सारे जीवन सब सुखी हो जावे। सच बोलता हूँ
0: सही
1: मैं,
0: बात, क्योंकि
1: पृथ्वी
0: हम
1: पे आदमी से या इंसान जिसको बोलते हैं उससे कोई भयंकर प्राणी है ही नहीं।
0: बस यही बात है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन साथ ही हमारे आसपास जो भी जीव हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके लिए
1: सोचना
0: भी
1: ही
0: कुछ करना
1: चाहिए।
0: चाहिए। जी
1: अभी देखो आप, आइए, कॉल चालू हुआ ना
0: हाँ जी
1: तब बारिश शुरू हुई थी, अभी आपके साथ बात खत्म नहीं हुई बारिश बंद हो गई।
0: बहुत ही थोड़ी सी
1: और
0: बारिश हुई।
1: ये इंसान मानवता की देन है ये।
0: सच्ची बात है आपकी जी। तो
1: ओके पायल, देन
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।

0: शिवाकृति बिल्डिंग, दांडिया बाजार, वडोदरा। सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी, अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी। ये है आरके ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।
1: आप ट्यून करू छे विविध भारती नू वडोदरा केंद्र KJIT सावली टाइम। अत्यारे सवारना 10:15 अने 40 सेकंड्स थई छे। धोरण 10 पछी डिप्लोमा एंजीनियरिंग अभ्यास माटेनो श्रेष्ठ विकल्प KJ इंस्टिट्यूट ऑफ एंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सावली।

0: दोस्तों, ये था आज का फोन इन प्रोग्राम। आपके फोन कॉल्स, आपके पसंदीदा गीत, इसी तरह आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। करना है सिर्फ एक फोन कॉल। हर सोमवार सुबह 10 से 11 के बीच हमें रहता है आपके फोन कॉल्स का इंतजार। हमारा यानी वडोदरा का एसटीडी कोड है 0265। जी हाँ दोस्तों, 0265। और हमारा कॉलिंग नंबर है 2648495। आई रिपीट, 2648495। तो मिलते हैं अगले फोन इन प्रोग्राम में। तब तक के लिए पायल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड बाय। दोस्तों, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा विविध भारती के वडोदरा केंद्र से।
1: आप सामने रहा था वडोदरा विविध भारती पर थी फोन इन कार्यक्रम हेलो विविध भारती। पूजा प्लस, पूजा मॉनसून सेलमा आ वर्षे फायदानो वरसाद, मेन्स गार्मेंट पर 50% सुधी डिस्काउंट, पूजा प्लस रावपुरा वडोदरा। विविध भारती नू वडोदरा केंद्र आप सांभळी रह्या छो। प्रस्तुत छे हिंदी कार्यक्रम जेमां आजे सांभळशो भरत जाधव नू कविता अने गजल पठन।
2: नमस्कार, मैं भरत जाधव, आज आप सबके लिए मेरी कुछ हिंदी गजलें प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। गजल है कि ये गुमराह गलियां, ये तन्हा सड़कें अच्छी लगती है मुझे, ये

गुमराह गलियां ये तन्हा सड़कें अच्छी लगती है मुझे, बेवजह हर ओर तकती मेरी नजरें अच्छी लगती है मुझे। ये गुमराह गलियां ये तन्हा सड़कें अच्छी लगती है मुझे, बेवजह हर ओर तकती मेरी नजरें अच्छी लगती है मुझे। और शेर है कि अनबूझ पहेली से अनगिनत दृश्यों से उस पार देखती ये, अनबूझ पहेली से अनगिनत दृश्यों के उस पार देखती ये, ओस से भीगी कलियों सी मेरी पलकें अच्छी लगती है मुझे। कि अंधेरा ओढ़ कर सोए खेत की तरह ओढ़ ली गम की चद्दर। शेर है कि अंधेरा ओढ़ कर सोए खेत की तरह ओढ़ ली गम की चद्दर, मेरे वजूद में सिमटी ये सर्दी तड़के अच्छी लगती है मुझे। मैं किनारे से अचानक आ गिरा हूँ उफनते मझधार में, मैं किनारे से अचानक आ गिरा हूँ उफनते मझधार में, मुझे निगलने हर ओर उठती ये लहरें अच्छी लगती है मुझे। भेद कहाँ सकती है कड़ी धूप भी हरे पेड़ को कभी, भेद कहाँ सकती है कड़ी धूप भी हरे पेड़ को कभी, पेड़ के साये से रोज ये मिलती खबरें अच्छी लगती है मुझे। भेद कहाँ सकती है कड़ी धूप भी हरे पेड़ को कभी, पेड़ के साये से रोज ये मिलती खबरें अच्छी लगती है मुझे। यह सच है कि यहाँ सब कोई मिलते हैं जुदा होने के लिए, यह सच है कि यहाँ सब कोई मिलते हैं जुदा होने के लिए, लेकिन चंद मिलन में उठती ये भंवरे अच्छी लगती है मुझे। और अंतिम शेर है कि मैं कहाँ अकेला सरे रहा खुद में खो गया हूँ यहाँ भरत। ये मक्ता कुछ इस तरह कहने की कोशिश की है कि मैं कहाँ अकेला सरे रहा खुद में खो गया हूँ यहाँ भरत, मेरे साथ अपने में गुम यह भीड़ अच्छी लगती है मुझे। मैं कहाँ अकेला सरे रहा खुद में खो गया हूँ यहाँ भरत, मेरे साथ अपने में गुम यह भीड़ अच्छी लगती है मुझे। ये गुमराह गलियां ये तन्हा सड़कें अच्छी लगती है मुझे, बेवजह हर ओर तकती मेरी नजरें अच्छी लगती है मुझे। दूसरी गजल है कि लगता है मेरे सूरज को थोड़ी फुर्सत मिली है, लगता है मेरे सूरज को थोड़ी फुर्सत मिली है, बहुत दिनों बाद मेरे दिल में धूप झील मिली है। गजल का मतलब है कि लगता है मेरे सूरज को थोड़ी फुर्सत मिली है, बहुत दिनों बाद मेरे दिल में धूप झील मिली है। और शेर है कि यूं तो हजारों गुल खिलते हैं गुलशन में लेकिन, यूं तो हजारों गुल खिलते हैं गुलशन में लेकिन, खुशी है मेरे बोए पौधे पर एक कली खिली है। क्या हो गया उस बंद गली में यूं अचानक की, क्या हो गया उस बंद गली में यूं अचानक की, सूरज के ढलते ही उठती हर आवाज नुकीली है। और बुदबुदों का यूं ऊपर उठना यह दिखाता है, बुदबुदों का यूं ऊपर उठना दिखाता है कि पत्थर के छूते ही सरोवर की यह सतह तिल मिली है। और ये मक्ता है कि लड़ने से ज्यादा वो रिश्तों को अहमियत देता है, लड़ने से ज्यादा वो रिश्तों को अहमियत देता है, यह मत कहो भरत को कि उसकी बुजदिली है। लगता है मेरे सूरज को थोड़ी फुर्सत मिली है, बहुत दिनों बाद मेरे दिल में धूप झील मिली है। और एक गजल है कि ख्वाबों के साथ थोड़ा चलकर देखते हैं, ख्वाबों के साथ थोड़ा चलकर देखते हैं, जग क्या कहता है उछल कर देखते हैं। ख्वाबों के साथ थोड़ा चलकर देखते हैं, जग क्या कहता है उछल कर देखते हैं, कोई बिखर कर कैसे जी लेता भी होगा। ये शेर है कि कोई बिखर कर कैसे जी लेता भी होगा, आओ रेत की तरह बिखर कर देखते हैं। उनके जज्बातों की नदी कितनी गहरी है, उनके जज्बातों की नदी कितनी गहरी है, आओ घुटनों तक उतर कर देखते हैं। उनके जज्बातों की नदी कितनी गहरी है, आओ घुटनों तक उतर कर देखते हैं। और वक्त की मिट्टी तले दर्द कितना दबा है, वक्त की मिट्टी तले दर्द कितना दबा है, आओ जज्बातों से खोद कर देखते हैं। और वो चला गया है घर छोड़कर ही कहीं,

चला गया है घर छोड़कर ही कहीं, आओ उसके बिना भी जीकर देखते हैं। सुना है वह तो मूरत है प्यासे प्यार की, सुना है वह तो मूरत है प्यासे प्यार की, आओ थोड़े अश्क से पूज कर देखते हैं। और गजल का मकता है कि उसने कहा था वह राख में दबी आग है, उसने उसने कहा था वह राख में दबी आग है, आओ भरत राख को फूंक कर देखते हैं, ख्वाबों के साथ थोड़ा चल कर देखते हैं, जग क्या कहता है उछल कर देखते हैं। और एक गजल के बादलों की तोहिन करने से जड़े सूखा करती है, बादलों की तोहिन करने से जड़े सूखा करती है, भीगी हुई जमी पर अव्वल पौंध उगा करती है। गजल का मतलब है कि बादलों की तोहिन करने से जड़े सूखा करती है, भीगी हुई जमीन पर ही अव्वल पौंध उगा करती है। और कहाँ डुबाता है दरिया सीने पर खेलने वालों को, कहाँ कहाँ डुबाता है दरिया सीने पर खेलने वालों को, अपने भीतर के छेद से ही नावें डुबा करती है। फूलों से कोई कहाँ छीन सकता है उसकी नजाकत, फूलों से कोई कहाँ छीन सकता है उसकी नजाकत, उसकी हस्ती तो कल्पनाओं में हुआ करती है। और आगे का शेर देखिएगा कि माँ ही वह हस्ती है जो खुद की फिक्र छोड़कर, ये बहुत नाजुक शेर है कि माँ ही वह हस्ती है जो खुद की फिक्र छोड़कर अपनी हर सांस में औलाद की दुआ करती है, माँ ही वह हस्ती है जो खुद की फिक्र छोड़कर अपनी हर सांस में औलाद की दुआ करती है। और बिक गया है आज वजूद सा मेरे पुरखों का घर, बिक गया है आज वजूद सा मेरे पुरखों का घर, लगता है मेरी छाती को बिजली छुआ करती है, और बचा नहीं पाए आपके निशा कोई मेरे पूर्वजो, बचा नहीं पाए हम आपके कोई निशा मेरे पूर्वजो, मेरे पाँव नीचे जमी हर कदम कुआं करती है, जब भी मेरे गांव की मिट्टी को छूता हूँ भरत। ये दो मकते इस गजल में कि जब भी मेरे गांव की मिट्टी को छूता हूँ भरत, हर एक कण मेरे ख्यालात को जुबा करती है, और चराग से किसी दर्द से जब रूबरू होता हूँ भरत, चराग से किसी दर्द से जब रूबरू होता हूँ भरत, मेरे जहन में सच्चाई की रोशनी फैला करती है, बादलों की तोहिन करने से जड़े सूखा करती है, भीगी हुई जमी पर अव्वल पौंध उगा करती है। और एक और गजल आगे देखिएगा, कुछ इस तरह कहने की कोशिश की है कि मेरी शाम और सुबह जिसने सजाई थी, मेरी शाम और सुबह जिसमें सजाई थी, वो इमारत है कहाँ जो हमने बनाई थी, मेरी शाम और सुबह जिसमें सजाई थी, वो इमारत है कहाँ जो हमने बनाई थी, वो गलियां वो नुक्कड़ वो खुला आंगन, वो गलियां वो नुक्कड़ वो खुला आंगन, वो सीटियां है कहाँ जो हमने बजाई थी। आगे शेर है कि वो पथरीली शाम वो खेतों का सुनापन, वो पथरीली शाम वो खेतों का सुनापन, वो बातें हैं अब कहाँ जो हमने सुनाई थी, जोर देकर भी छू नहीं सकता था अंधेरा, जोर देकर भी छू नहीं सकता था अंधेरा, वो रोशनी गई कहाँ जो हमने जलाई थी, हम थे राजा हम ही थे प्रजा भी अपनी, वो नगरी अब कहाँ जो हमने बसाई थी, हम थे राजा हम ही थे प्रजा भी अपनी, वो नगरी अब कहाँ जो हमने बसाई थी, वो बातों के पुष्प वो आंखों का उपवन, वो तानों की तितली कहाँ जो बुलाई थी, वो आना बैठना खड़े रहना और जाना, वो इठलाई है कहाँ जो हमने रचाई थी, मेरी शाम और सुबह जिसमें सजाई थी, वो इमारत है कहाँ जो हमने बनाई थी। आइए देखिए आगे एक और गजल, गजल का मतलब है कि हम अभी भी ढूंढते हैं तुम्हें दर और दीवारों में, हम अभी भी ढूंढते हैं तुम्हें दर और दीवारों में, और तुम बताते हो कि रहते हो हर नजारों में, हम अभी भी ढूंढते हैं तुम्हें दर और दीवारों में, और तुम बताते हो कि रहते हो हर नजारों में, कहते हो तुम हमेशा मन से कोई वास्ता नहीं, कहते हो तुम हमेशा के मन से कोई वास्ता नहीं, और हम ढूंढते हैं तुम्हें मन के इन बाजारों में, तुम बहते हो सदा से यहाँ सृष्टि की नदियों में, तुम बहते हो सदा से यहाँ सृष्टि की नदियों में, तुम

0: कहां से मिलोगी हमें इन सूखे किनारों में। पांव भीगते हैं थोड़े और खींच जाते हैं वापस, पांव भीगते हैं थोड़े और खींच जाते हैं वापस। हाथ थाम लो तुम हमारे, ले चलो मझधारों में, और दूर दूर है फैला गहरा दरिया ये उछलता हुआ, दूर दूर है फैला गहरा दरिया ये उछलता हुआ। है कहां थोड़ी भी फिकर उसकी मछुआरों में, जिंदगी के दरख्त से रोज झड़ते हैं कई पत्ते, जिंदगी के दरख्त से रोज झड़ते हैं कई पत्ते, और तुम बताओ हमें मिलोगे किन बहारों में। तुम ही दबे पड़े हो इस मिट्टी में और ख्यालों में, तुम ही दबे पड़े हो इस मिट्टी में और ख्यालों में। तुम चमक भी रहे हो आसमां चांद सितारों में, हम अभी भी ढूंढते हैं तुम्हें दर और दीवारों में, और तुम बताते हो कि रहते हो हर नजारों में। आगे गजल है कि खोजती है हर गली इस शहर में, खोजती है हर गली इस शहर में, खो गया है आदमी इस शहर में। कि आज जलती है जवा पर हर तरफ आग, आग जलती है हर जवा पर, मंद हवा की है कभी इस शहर में, आग जलती है जवा पर हर तरफ, मंद हवा की है कमी इस शहर में। और ढूंढते हैं चेहरा खुद में सभी अपना, ढूंढते हैं चेहरा खुद में सभी अपना, लोग सब है अजनबी इस शहर में। मैं मुसाफिर हूँ यहाँ कुछ दिन का, मैं मुसाफिर हूँ यहाँ कुछ दिन का, घूमने निकला अभी इस शहर में। क्यों उसे तुम याद करते हो भरत, तुम उसकी हो छवि इस शहर में। और एक और गजल देखिए कि रेत ने नदी ली पत्थरों ने घाट लिया, रेत ने नदी ली पत्थरों ने घाट लिया, कुछ इस तरह दर्द हमने बांट लिया। सब अधूरी बातें हम करते रहे हवा से, सब अधूरी बातें हम करते रहे हवा से, वो तन्हा रास्ता हमने यूं ही काट लिया, उसका कोई काम अभी बाकी होगा, उसका कोई काम अभी बाकी होगा, गांव भर से वक्त ने मुझे छांट लिया। कुछ कर न सकी पीड़ा देने वाले का, कुछ कर न सकी पीड़ा देने वाले का, मेरी सरलता पर माँ ने मुझे डांट लिया। रेत ने नदी ली पत्थरों ने घाट लिया, कुछ इस तरह दर्द हमने बांट लिया। और एक गीत है कि क्या पता है तुमको इतना तुम कहाँ से आए हो, क्या पता है तुमको इतना तुम कहाँ से आए हो, कभी न पूर्ण होने वाली अतृप्ति संग लाए हो, खुद सफर पर निकल पड़े हो या किसी ने भेजा है, अंश के आधार प्रति भी क्या कदम बढ़ाए हो, और मौन प्रकृति रूप देखते हो रूप तुम्हारा वह मानो, मौन प्रकृति रूप देखते हो रूप तुम्हारा वह मानो, अपनी महिमा में जागो तुम अपने वजूद को जानो, तुम अगन हो तुम चमक हो जल थल और वायु में, तुम गगन हो असीम सिमट कर आ गए हो आयु में, तुम अगन हो तुम चमक हो जल थल और वायु में, तुम गगन हो असीम सिमट कर आ गए हो आयु में, तुम गुंज हो तुम कसक हो तुम पीड़ा पतवारों की, तुम रूप की हो परछाई तुम कथाकारों की, तुम स्वयं प्रकट हुए हो ओ महाकाल की संतानों, अपनी महिमा में जागो तुम अपने वजूद को जानो। और अंतिम बंद है कि खेल खजाना छोड़ देना है जैसे तुमने देखा नहीं, नाता सबसे तोड़ देना है तुम आए थे यहाँ कहीं, खेल खजाना छोड़ देना है जैसे तुमने देखा नहीं, नाता सबसे तोड़ देना है तुम आए थे यहाँ कहीं, भोगों की स्वेतरणी से तुमको पार लगाना है और अपने घर को वापस ढूंढ तुम्हें लौट जाना है, बाहर भीतर तुम ही तुम हो और निराकार मेहमानों हो, अपनी महिमा में जागो तुम अपने वजूद को जानो, क्या पता है तुमको इतना तुम कहाँ से आए हो, कभी न पूर्ण होने वाली अतृप्ति संग लाए हो, खुद सफर पर निकल पड़े हो या किसी ने भेजा है, अंश के आधार प्रति भी क्या कदम बढ़ाए हो, अपनी महिमा में जागो तुम अपने वजूद को जानो। आप सबके प्रति मेरी शुभ भावना व्यक्त करते हुए मेरी इस बात को यहाँ मैं विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आप सांभी रहा था भरत जाधव नु गजल पठन हिंदी कार्यक्रम अंतर्गत, प्रसारण विविध भारती ना वडोदरा केंद्र पर थी करवामां आव्युं।

0: जरूर सुनिए पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियम हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
1: ब्रो लगननी शॉपिंग।

0: કિશોર કુમારના સ્વરમાં લાવા ફિલ્મના આ ગીત સાથે જ આજનું ફિલ્મ સંગીત અહીં સમાપ્ત થાય છે. વડનેરકર જ્વેલર્સ. વડોદરામાં સૌભાગ્યના દાગીના તો ફક્ત વડનેરકર જ્વેલર્સના જ. વડનેરકર જ્વેલર્સ, બ્રહ્મપુરી, દાંડિયા બજાર, વડોદરા. શ્રોતા મિત્રો, થોડી જ વારમાં સાંભળશો હિન્દીમાં સમાચાર.
1: આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં કનકલતા. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है. लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया. विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे. श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है.
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे. मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा. सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही. सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे. आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई. सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल

0: शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने देते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में प्रिया कोनजेंगबाम और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।
3: इंजीनियरिंग में पाकू करियर बनाऊ छे तो डिप्लोमा बीई के डी टू डी माटे बेस्ट ऑप्शन छे। केजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सावली।
4: केजे आईटी सावली आपे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी गारंटी।
3: विजिट अवर वेबसाइट kjit.org टुडे।
5: गिरीशभाई गणदेविकर ज्वेलर्स, शुभ अवसरोमां सोनानी खरीदी माटे विश्वासपात्र नाम गिरीशभाई गणदेविकर ज्वेलर्स, जेतलपुर ब्रिज पासे, अलकापुरी, वडोदरा। आइए सुनते हैं यादों की महफिल।

शैलेंद्र के बोल, किशोर कुमार की आवाज, उन्हीं का संगीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, किशोर कुमार की उदास कहानी, यादों की महफिल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

देवर की आवासी श्यामल मित्रा का संगीत अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन, फिल्म अमर प्रेम।

0: अमर प्रेम फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में था। आनंद बख्शी की बोल थी आर डी बर्मन की तर्ज। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। मजबूर फिल्म का ये गाना था किशोर कुमार के उदास नगमे विविध भारती के कार्यक्रम में यादों की महफिल।

किशोर कुमार के उदास नगमे अलग अलग संगीतकारों के साथ। फिल्म का नाम निशान, राजेश रोशन का संगीत,

0: दे।
1: कितने रंग हैं, किशोर कुमार की आवाज के एक रंग उदासी का भी है। किशोर कुमार को हमेशा मस्ती से, ऊधम से, शरारत से और कॉमिक अंदाज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जिंदगी का एक जरूरी रंग उदासी है और यहां किशोर कुमार खूब खिलते हैं। अनजान और प्रकाश मेहरा के बोल।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। किशोर कुमार का जन्मदिन फिल्म संगीत के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही अनमोल दिन होता है, और आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का मिजाज हमने बिल्कुल अलग रखा है, इसीलिए आज की इबारत बिल्कुल अलग तरह की है।

0: ये भारत। अरे सुनो सुनो गुणी जनो, मेरा मतलब है सुनिए सुनिए, जरा सी हुई चूक और आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, अपनी तो बच गई बीन, जाना था जापान पहुंच गए चीन। अरे भाई किसी ने कहा था निकलो घर से दुनिया की रौनक देखो, तो बस निकल पड़े टिम्बकटू काठमांडू, रह गए हक्का बक्का, देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या ना करे ये प्रीत रे। कहीं मिला निराला सुरमा, कहीं प्यारी बिंदु और कहीं भीगी भागी लड़की, पर फिर याद आई गुरुजी की सीख, कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना। तो हमने दिया चकमा ईना मीना डीका को, भले हमें गाना ना आया बजाना ना आया, पर एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, तो बढ़ के बोल बेटा बम बम, 1 बजे मिलेंगे हम। यह है आज की भारत और लीजिए 1 बजे मिल भी गए हम, लेकर आए हैं किशोर कुमार की फुल मस्ती।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छक्कन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ कर्नल सिंह
0: भाई, सबको सुनने की बात कह रहे हैं किशोर कुमार इस गाने में। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो टुकड़ा हमने बजाया ये किस फिल्म के किस गाने का टुकड़ा था? और अब किशोर की दूसरी मस्ती, ये गाना बहुत कम लोगों ने सुना है।

0: भाई बड़के बोल बेटा बम बम वाला ये गाना, ये सोचकर हैरत होती है कि इसमें गीतकार का कितना योगदान है और किशोर का कितना योगदान।
1: बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी देखियाले बादशाह सुना दे कुड़िये, ए पुत्रा देख भाई इधरा, खाली है पिंजरा, ए देख भाई इधरा, अरे खाली है पिंजरा, पिंजरे के अंदर।
0: कौन कौन बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
1: अंदर निकलेगा बंदर, यही परिचय है राजा जानी का, बोलो मसाल जवानी दीवानी का। ए चल बेटा बम बम बम बम चीक चीक चाम चीक चीक बम।
0: क्या बात है किशोर कुमार की। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं सचमुच में या फिर वीडियो पर, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मस्ती किस तरह की होती थी। लेकिन किशोर कुमार एक बहुत संजीदा आदमी भी थे। किशोर कुमार को सेलिब्रेट करना इसलिए मुश्किल है कि आप किस तरह से उन्हें सेलिब्रेट करेंगे, इतना बड़ा इतना ज्यादा विस्तृत करियर क्या सुनाएं और क्या नहीं सुनाएं। इसीलिए हमने आज चुना है किशोर कुमार की मस्ती को। लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किशोर कुमार के किस अंदाज के गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। उनके रूमानी गाने, उनके उदास गाने, ऐसे गाने जिनमें जिंदगी का दर्शन है, या ऐसे गाने जो हमने आज चुने हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा मस्ती भरे, बल्कि कहें कि ऊधम भरे गाने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जरा चलते हैं टिम्बकटू और काठमांडू।
2: गौरी जरा बती या सुनो जी मोरी मोरी।
0: आप सभी को किशोर कुमार के अपने पसंदीदा तीन गानों की लिस्ट बनाकर हमें भेजनी है।
2: चोरी चोरी चोरी।
0: जरा देखते हैं कि आपकी पसंद के किशोर के तीन फेवरेट्स कौन से हैं।
2: काकरी माकरी, आकरी माकरी, काकरी माकरी, आकरी माकरी, हे हे हे हे।

पवन जब चली ओ गोरी गोरी कली, मैं आया तेरी गली, कोई क्या करेगा गा गा के गे गे गे ली जरा टिम्बकू। काठमांडू काठमांडू गले हू, मैं हूँ लोहा चुंबक तू, ऐसे भला बच बच के रहू, गे गे गे गे ली जरा।

0: दीवाना, पलक न गिराना, तू जरा सा उठाना आंखों का पर्दा दादा।
1: चुम्बक तू
2: भला
1: गे गे गे गे।

क्या आपको ये अंदाजा लग सकता है कि ये गाना 65 बरस पुराना है, 65 साल पुराना? और किशोर के गानों को सुनते हुए ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गीतकारों के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती बन जाते थे, उनके लिए गाना कैसे लिखा जाता होगा। ये जरा टिम्बकटू मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स यहां पर मैं पढ़ दूं। तीन पसंदीदा गानों की जो बात हमने कही थी, तो एक श्रोता है, उनके तीन पसंदीदा गाने खिलते हैं गुल यहां, फूलों के रंग से और मेरे महबूब कयामत होगी। बहुत सारे श्रोताओं की कमेंट्स और इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहा है हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन के इन गानों को पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, मंजिलें अपनी जगह हैं। और तीसरा गाना उड़ गया, कहाँ गया ये, आ चल के तुझे लेके चलूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही कठिन प्रश्न है क्योंकि किशोर कुमार के कौन कौन से रंग पसंद है, हमें तो सारे रंग पसंद हैं। एक और श्रोता, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, रुक जाना ओ जाना और फूलों के रंग से, ये उनके फेवरेट हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें अपनी जगह हैं और सलाम इश्क, ये किसी और श्रोता के फेवरेट्स हैं। और इसके अलावा और भी चीजों के जवाब हमारे श्रोताओं ने दिए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भाई कहते हैं मुझको राजा फिल्म का गाना था, बढ़ के बोल बेटा बम बम, मजरू सुल्तानपुरी ने वो गाना लिखा था। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा कि कहानी किस्मत की फिल्म के गाने से आपने कार्यक्रम को शुरू किया था। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनकी पसंद के तीन गाने, कुछ तो लोग कहेंगे पायल वाली देखना और जीवन से भरी तेरी आंखें। बहुत सारे श्रोताओं की बातें और किशोर कुमार के बारे में जब लोग अपने जज्बात शेयर करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं तो ये लगता है कि कितना प्यार इस कलाकार से हम सभी को है जो हम फिल्म संगीत को प्यार करते हैं। अभी गाना आ रहा है जो बिल्कुल बीच से आ रहा है, यानी इस

0: का सबसे ज्यादा फनी पोर्शन हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको दो बातें बतानी है, एक तो फिल्म का नाम और दूसरा गीतकार का नाम। ऐसा हुड़दंगा गाना आखिर किसने लिखा?
1: जय गोविंदम जय गोपाल जय गोविंदम जय गोपाल जय गोविंदम जय गोपाल।

0: पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम। अरे बम बम नाचे किशोर कुमार बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम।
1: जरा सोचिए कि जब गानों की लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती होगी तो कैसे म्यूजिशियंस और कोरस और किशोरदा के साथ के सिंगर सारा तालमेल बैठाते होंगे और इस हुड़दंग के बीच अपने हिस्से की अदाकारी करते होंगे। क्या कमाल है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने तीन पसंदीदा गाने लिखे, मेरे दुख सुख का संसार, तेरे दो नैनन में, लहरों से पूछ लो और हरे कृष्ण, नया दिन नई रात, काफिला और फरेब फिल्म के गाने, बहुत ही अनमोल गाने इन्होंने बताए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के गानों में बहुत सारी मस्ती सुनने को मिलती है, उनकी यूडलिंग कमाल की है और इसीलिए उन्हें सारी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, वो शाम कुछ अजीब थी और कश्ती का खामोश सफर, ये हमारे एक श्रोता के तीन पसंदीदा गाने। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि जिस तरह से वो संजीदा गीत गाते थे, लगभग उसी सुरूर में वो शोख गीतों की कलियां चटकाते रहे हैं। आंसू और मुस्कान फिल्म का गाना भी हमने आपको सुनवाया, कमर जलालाबादी ने इस गाने को लिखा, जय गोविंदम जय गोपालम, पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। ये जो बोल है कमाल, मतलब आप ये जरा ये सोचिए कि सामान्य गीतकारी में इनकी गुंजाइश कहाँ है, लेकिन किशोर कुमार गानों में जो गुंजाइश निकालते हैं वो अद्भुत है। जैसे कि ये गाना, आज अगर किशोर कुमार होते तो पहली बात आप उनसे क्या कहते बताइए।

0: सच का वादा खिसक के पहुंची रेस्टोरां जान में आई जो
1: हाय हीरो हाय हीरो हाय हीरो
2: हाय बेबी हाय बेबी हाय बेबी
1: हाय

0: एक श्रोता ये लिखते हैं कि अगर आज किशोर कुमार होते तो उनके सामने बैठकर उनके गाए हुए उनके कुछ गाने सुनती। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म जगत में जो योगदान है उसके लिए हम हमेशा किशोर कुमार के ऋणी रहेंगे। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार होते तो हम उनसे एक चतुरनार, पांच रुपया, बारह आना जैसे गाने सुनते। और इसके अलावा एक और श्रोता ने जो बात कही है कि आज के तमाम हीरोज के गाने वही गा रहे होते और सबसे ज्यादा गाने उनके नाम पर होते आज अगर किशोर कुमार होते। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये कहा है कि बहुत ही अनसुना गीत आपने बजाया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि अगर आज किशोर कुमार होते तो ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार के सभी गाने वही गा रहे होते। और एक और श्रोता कहते हैं कि हम तो भाई उन्हें साष्टांग प्रणाम करते आज अगर होते। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी यूडलिंग हमें सुनवा सिखा दीजिए। और फिर एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार हमारे सामने होते तो हम सैल्यूट करते, चरण स्पर्श करते, कितने लोगों के कितने जज्बात। एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर मरते नहीं, किशोर सबके दिलों में जिंदा हैं। किशोर कुमार को समर्पित ये आज का कार्यक्रम सुरीला सफर सीधे रास्ते पर नहीं जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल वैसा है जैसी किशोर कुमार की मस्ती, जैसे किशोर कुमार का।
1: आकाशवाणी समाचार बकुला परमार वांचे छे। सौप्रथम मुख्य समाचार। नीट आंदोलन मुद्दे विद्यार्थियों सामे कथित पोलिस कार्यवाही अने राम मंदिर में दाननी चोरी ना मामले विपक्षोना भारे होबाड़ा बाद संसदना बन्ने गृहोनी कार्यवाही स्थगित। संसदनी कार्यवाही खोरंभे पाड़ीने समय बर्बाद करातो होवानो संसदीय मंत्री किरण रिजिजूनो विपक्ष पर आरोप। महिलाओं विरुद्ध अभद्र निवेदन बदल तमिलनाडु में विरोध पक्षना नेता उदयनिधि स्टालिन की धरपकड़। एनएससीमां सौदाओना नवी पद्धतिना अमलना कारणे सेंसेक्स अने निफ्टीना व्यवहारोमां तफावत, बन्नेमां घटाडो। अने दक्षिण कोरियामां आजथी शरू थनार कोरिया मास्टर्स बेडमिंटन टूर्नामेंटमां भारतनी तन्वी शर्मा महिला सिंगल्समां भारतनुं नेतृत्व करशे। समाचार विगतवार। नीट मुद्दा पर विद्यार्थीओना विरोध दरमियान कथित पोलिस कार्यवाही सहित अनेक मुद्दाओ पर विपक्षना होबाड़ाना कारणे संसदना बन्ने गृहो बपोरे 2 वाग्या सुधी स्थगित करवामां आव्या छे। राज्यसभानी कार्यवाही बपोरे 12 वाग्ये प्रथम मुलतवी रह्या बाद फरी मळता सभापति सीपी राधाकृष्णने विपक्षना होबाड़ा वच्चे प्रश्नकाळ शरू कर्यो। घणा सभ्योए प्रश्नो पूछ्या जेना मंत्रीओए जवाब आप्या। विपक्षना नेता मल्लिकार्जुन खड़गेए अयोध्या राम मंदिरमांथी दानचोरीनो मुद्दो उठाव्यो हतो। होबाड़ा मामले संसदीय बाबतोना मंत्री किरण रिजिजूए कह्युं के विपक्षो जनता ने गैरमार्गे दौरवानो प्रयास करी रह्या छे।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग

0: लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: आज बपोरना सत्र दरमियान बेंचमार्क स्थानिक इक्विटी सूचकांकों नकारात्मक नोंध पर ट्रेड थई रह्या हता। छेल्ला अहेवालो आव्या त्यारे सेंसेक्स 112 पॉइंट घटीने ज्यारे निफ्टी 239 पॉइंट घटीने कारोबार करी रह्यो हतो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा रजू करायेला नवा क्लोजिंग ऑक्शन सत्रना माळखाना कारणे बन्ने सूचकांकोमां इंट्रा डे ट्रेडमां तफावत जोवा मळ्यो हतो। जम्मू काश्मीरमां आ वर्षे वादळ फाटવાની 35 ઘટનાઓ બની છે। આ ઘટનાઓમાં 31 લોકોના મોત થયા છે અને ઘર, રસ્તાઓ, પુલ અને જાહેર માળખાને વ્યાપક નુકસાન થયું છે। સત્તાવાર માહિતી અનુસાર 1 જૂનથી જુલાઈના મધ્ય સુધીમાં વાદળ ફાટવાની 22 ઘટનાઓ નોંધાઈ હતી, જ્યારે જુલાઈના ઉત્તરાર્ધ અને ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં સતત ભારે વરસાદના કારણે વધુ ઘટનાઓ બનતા વાદળ ફાટવાની કુલ સંખ્યા 35થી વધુ થઈ હતી। ओडिशा अने आसाममां पूरनी स्थितिमां सुधारो थई रह्यो छे। ओडिशामां मुख्य नदीओ अने तेनी उपनदीओमां पाणीनुं स्तर घटी रह्युं छे। जो कि सौथी वधु असरग्रस्त जिल्लाओमां राहत बचाव अने पुनर्वसन कामगीरी हजु चाली रही छे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझीए पूरग्रस्त लोको माटे 110 करोड़ रूपियाना प्रारंभिक राहत पेकेजनी जाहेरात करी छे। माळखागत सुविधाओ अने जाहेर संपत्तिने थयेला नुकसानना विगतवार मूल्यांकन बाद एक व्यापक राहत पेकेज जाहेर कराशे। दक्षिण कोरियाना आसनमां आजथी कोरिया मास्टर्स बेडमिंटन टूर्नामेंट शुरू थशे। 17 वर्षनी तन्वी शर्मा महिला सिंगल्समां भारतनुं नेतृत्व करशे। तन्वीए गया रविवारे ताइपे ओपनमां तेनुं प्रथम बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल जीत्युं हतुं। मालविका बंसोड, अनमोल खराब, ईसरानी बरुआ, आकर्षी कश्यप, अश्मिता चलिहा सहितना खेलाड़ियो आ टूर्नामेंटमां भाग लई रह्या छे। किदांबी श्रीकांत मेन्स सिंगल्समां भारतीय टीमनुं नेतृत्व करशे। तेमनी साथे किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारून मन्नेपल्ली, रौनक चौहान अने सानेथ दयानंद पण भाग लेशे। नीट आंदोलन मुद्दे विद्यार्थीओ सामे कथित पोलीस कार्यवाही अने राम मंदिरमां दाननी चोरीना मामले विपक्षोना भारे होबाळा बाद संसदना बन्ने गृहोनी कार्यवाही स्थगित। संसदनी कार्यवाही खोरंभे पाडीने समय बर्बाद कराते होवानो संसदीय मंत्री किरण रिजिजूनो विपक्षो पर आरोप। महिलाओ विरुद्ध अभद्र निवेदन बदल तमिलनाडुना विरोध पक्षना नेता उदयनिधि स्टालिननी धरपकड़। एनएससीमां सौदाओना नवी पद्धतिना अमलना कारणे सेन्सेक्स अने निफ्टीना व्यवहारोमां तफावत, बन्नेमां घटाडो। અને દક્ષિણ કોરિયામાં આજથી શરૂ થનાર કોરિયા માસ્ટર્સ બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટમાં ભારતની તન્વી શર્મા મહિલા સિંગલ્સમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરશે। આકાશવાણી પરથી સમાચાર પૂરા થયા। હવે પછી આપ 2:30 પ્રાદેશિક સમાચાર સાંભળી શકશો।

0: का नाम मिस खम्बा। बम्पी बम्पी बम्पी बम्प, कुछ खेल हुआ कुछ मेल हुआ, दिल फेल हुआ हाय हाय रे।
1: बबलू बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू
0: होनोलुलू।
2: कहाँ से पहुंचे और कहाँ चले गए होनू लुलू, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना परिवार, फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। शैलेंद्र का ये गीत और सलील चौधरी का संगीत, इस गाने के बोल एक कागज पर लिखकर देखिए और जरा सोचिए कि कैसे लिखे गए होंगे ये गाने और कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की गई होगी। 1956 में आई थी ये फिल्म और बिमल रॉय की ये फिल्म थी और बिमल रॉय निर्मित इस फिल्म में किशोर कुमार का स्पेशल अपीयरेंस था, ये भी हमारे कुछ श्रोताओं में से किसी एक ने कहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा किस तरह से किसी भी गाने को मजेदार बना देते हैं कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 50-60 साल पहले लड़कियों के लिए अगर शादी ना करनी होती तो भी करनी पड़ती थी, आज की बात कुछ अलग है। एक श्रोता है जिन्होंने सारी बात को समअप कर दिया है कि शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए, इसलिए शादी करना ही बेहतर है, यह उनका विचार है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और प्रभावशाली कलाकारों में से एक वो माने जाते हैं। एक और श्रोता का कहना यह है कि उनके 3 पसंदीदा गानों को सिलेक्ट करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो

ये कहते हैं कि बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन आज आपने किया है। पहले तो उदास गाने बजाए और उसके बाद ऐसे मस्ती भरे गाने लगाए कि एक श्रोता कह रही है कि ऐसे गीत लाए हैं जो आज हमने इनमें से कुछ पहली बार सुने हैं। ठीक है भाई, अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए रुपहले पर्दे पर इस गाने में कौन कौन नजर आते हैं और किशोर कुमार इस गाने में किसकी बैंड बजा रहे हैं।

0: हो गोरी हो गोरी हो गोरी बड़के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय लटकट रंगीले सावरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय
0: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय

0: होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: भाई खत्म हुआ ये हुड़दंग का गाना, हाफ टिकट फिल्म का गाना शैलेंद्र के बोल। और एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से ना करें क्षेत्रवाद। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसा हुड़दंगा कार्यक्रम कर सकते हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं फिल्म हाफ टिकट शैलेंद्र जी के बोल हैं। और हाँ एक चीज आपसे कहनी है कि कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने जोश जोश में सखी सहेली वाली या आज शाम के 4 बजे पिटारा वाले कार्यक्रम में जाके अपने कमेंट कर दिए और किशोर कुमार के फेवरेट गाने वहां चिपका दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जाके वहां पर आपके कमेंट्स देखे तो मुझे लगा ये कुछ कमेंट्स वहां पर क्यों हैं। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई इस गाने में किशोर कुमार प्राण की बैंड बजाते हैं, क्या तो शानदार मुकाबला है दोनों महान कलाकारों का इस गाने में। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का शानदार उदाहरण है और किशोर कुमार ने ही महिला और पुरुष स्वर में भी गाया है और प्राण के स्वर में भी गाया है। और इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं लेकिन आज गाने भी ज्यादा हैं और आप सभी के जज्बात जिस तरह से आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हौसला बढ़ाने की भी बात है। और ये भी कि किशोर कुमार के प्रति जो आपका प्रेम है वो कितना ज्यादा है। अब एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि पहले हास्य गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था विविध भारती पर, आज के इस कार्यक्रम ने उसकी याद दिला दी है। इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि जब वो हास्य गीत गाते थे तो लगता था उन्होंने गाने को किसी धागे की तरह उलझा दिया है और यही धागा उलझाना उनकी विशेषता थी। अब 2 गाने बैक टू बैक आएंगे, बल्कि गानों के अंश बैक टू बैक आएंगे आपको इनकी

भाई बैक टू बैक दो गाने हमने आपको सुनाए और सभी श्रोताओं ने अपने इन बातों के जवाब दिए। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन फिल्म के ये गाने, और चलती का नाम गाड़ी के गाने के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि क्या तो एक्सप्रेशन है, मधुबाला के लिए गा रहे हैं पर लगा ऐसा जैसे उनके लिए उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो शानदार फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, कितने बार आपने देखी है जरा बताइएगा तो हम ये अंदाजा लगा पाए कि चलती का नाम गाड़ी हमारे आज सुन रहे श्रोताओं में सबसे ज्यादा कि बार किसने देखी है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात ये है कि आज जो मैंने इबारत लिखी थी किशोर कुमार के हुड़दंगे गानों के बारे में, क्या कोई गिनकर बता सकता है कि उस पूरी इबारत में कुल कितने गाने समाये हुए हैं। और अब किशोर कुमार का ये बेतहाशा हुड़दंगा गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना।

फिर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। केम ऊंघे छे भाई घनश्याम जी, ओ केम ऊंघे छे भाई घनश्याम जी।

कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, निकल के आघर से आघर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। अरे भाई।

0: अरे कल जो था कल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा। टूटी पुरानी ढपली पे तू कल का मर्सिया मत गा। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से।
1: क्या तो शानदार गाना है नई दिल्ली फिल्म का ये गाना। भाई आज की इबारत पढ़िए और जल्दी से हिसाब लगाकर बताइए कि आज की इबारत में मैंने जो शब्द लिखे हैं, गानों को जोड़कर जो इबारत बनाई है, उसमें गानों की कुल संख्या कितनी है, जरा हम देखें तो कि आप लोग सही सही अंदाजा लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि शब्द शब्द पर गाने समाये हुए हैं। तो कुछ श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुल 13 गीत हैं जो कि गलत जवाब है, एक और हैं जिन्होंने 14 गीत लिखा है वो भी गलत जवाब है। तो जरा ध्यान से पढ़िए और आज का ये कार्यक्रम, एक कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा तो खत्म हो चुका है। तो एक और श्रोता है जिन्हें 16 गाने इस गाने की इबारत से मिले हैं, तो बहुत करीब पहुंच चुकी हैं वो। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भाई घर से बाहर तो आज नहीं निकल सकते क्योंकि आज हम सुरीला सफर सुन रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि हम तो अभी घर पर ही हैं, निकलेंगे तो रौनक देख लेंगे, घनश्याम भाई का नाम भी है इस गाने में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीत है। एक और श्रोता है जो देर से जुड़े हैं लेकिन इस कार्यक्रम में उनको बिल्कुल मजा ही आ गया है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश भी ऐसा ही कह रही है कि भाई अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। तो ये किशोर कुमार का जादू है। और अब जो गाना आ रहा है वो किचन में खाना पकाते हुए फिल्माया गया गाना है, और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किचन में खाना पकाते हुए सबसे बड़ा ब्लंडर आपने जो किया था वो क्या था और कब किया था, क्या पका रहे थे आप।
0: फूंक फूंक कर चूल्हा, अखियन का भयो सत्यानाश, हल्दी देवी बहु है अपनी, श्रीमती मिर्ची अपनी सास। हाँ बोल मेरे दुखिया मन, कब तक ये चूल्हा ये चौका ये झाड़ू ये बर्तन ये आटा बटाटा ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरी की। पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास। एक रोज

भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और इस तेजी के साथ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है कि समझ नहीं आ रहा किसने क्या लिखा है। एक श्रोता है जो ये कहते हैं क्यों ना रोटियों का हम पेड़ लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें। वाह भाई वाह वाह वाह वाह। यहां मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जो शैलेंद्र के बोल कोट किए हैं इन्होंने, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें, ये किशोर कुमार का गाया हुआ एक गाना है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा गाना है? जिन्होंने पोस्ट किया वो प्लीज मत बताइएगा। एक और श्रोता है जो कहती है कि 19 गाने हैं आज की इस इबारत में। एक श्रोता है जो कहती है कि आज की इबारत में 20 गाने हैं। एक श्रोता नाराज है कि सुरीला सफर की पोस्ट आते ही अपने विचार व्यक्त करता हूं पर आपको अपने सवालों में ही दिलचस्पी रहती है, शायद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके हमने गलती कर दी है। भाई आपका कमेंट दिखा नहीं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करते हैं और देखिए कि लगातार कमेंट्स पढ़ रहे हैं गानों के बीच में। ये कमेंट दिखा और फौरन पढ़ा। एक श्रोता है जिन्होंने गाजर का हलवा बनाया और दूध की बजाय चावल पता नहीं क्या उन्होंने जोड़ दिया और हलवे की बैंड बज गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही हैं कि उन्होंने चाय में नमक डाल दी थी और मेहमानों को परोस भी दी थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि कुछ कुकर में खिचड़ी बन रही थी, गैस चूल्हे पर रखकर भूल गया, उसका ढक्कन उड़ा, खिचड़ी जाकर दीवारों और छत पर लग गई, हे भगवान। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि पहली बार जब आटा गूंधा तो ढेर सारा पानी डाल दिया था और एक ही बार में वो गीला हो गया था। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि इस गाने के साथ मेरा भी एक किस्सा है। वैसे तो कभी कभी पापा छुट्टी के दिन खाना बना देते थे और उस दिन यही गाना गाते थे, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमारी दाल तो गल गई है और अब हम रोटी पका रहे हैं, वही वाह। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई 18 गाने आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस इबारत में है। और ये जो किचन के ब्लंडर्स हैं ये पढ़कर बड़ा ही मजा आ गया। बल्कि एक और मजेदार किस्सा ये हुआ है कि के मुंगोचो घनश्याम जी, इस तरह की जो पंक्ति है अरे भाई निकल क्या घर से वाले गाने में, तो बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनका नाम घनश्याम है, उनको बड़ा मजा आ गया आज के कार्यक्रम में इस गाने की इस लाइन को सुनकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किशोर का एक और हुड़दंगा गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम आप बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आज इतने सारे हुड़दंगे गाने जो हमने बजाए उसमें से आपका पसंदीदा कौन सा गाना था, और अगर कोई भयंकर हुड़दंगा गाना हमने मिस कर दिया तो वो भी बता दीजिए।

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए। एक श्रोता लिखती हैं कि भाई जरूरत है एक श्रीमती की, ये गाना नहीं बजाया गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं प्रिय प्राणेश्वरी को मिस कर रही हूं, इसके अलावा झुमरू गाना नहीं बजाया गया। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है, पर एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, ये गाना मुसाफिर फिल्म के गाने की पंक्तियां हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा ये गाना है जिसमें इतनी सुंदर पंक्तियां आती हैं। शैलेंद्र लिखते हैं कि एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला, अम्मी को आई हंसी हंस के वो कहने लगी लाल मेहनत के बिना रोटी किसके घर पर पकी। ये है जादू गीतकारी का, ये है जादू शैलेंद्र का। किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा गाना और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति, शुक्रिया जिस भी किसी श्रोता ने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई चलते चलते ये जरूर बता दीजिएगा कि कुल कितने गानों से आपने इबारत सजाई थी। बहुत सारे श्रोता अलग अलग आंकड़े लिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा तकरीबन 18 गाने तो मुझे ही नजर आए थे, और आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग शब्दों से भी गाने सज जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है, और खाना पकाते हुए दाल गलेगी जैसे गाने सुनते हुए किसी के दाल चावल बन गए, किसी की रोटी और किसी की हैदराबादी बिरयानी। और कार्यक्रम का आखिरी गाना, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में देखिए संगीतकार भी यहां बदल जाते हैं, और ये भी कि इस गाने के जरिए दुनिया को देखने की नई नजर आपको मिलेगी।

दुश्मन जिसे सताए इसको लगा के जाए, जाके नजर मिलाए धोखा कभी न खाए। बूढ़ा हो या हो बच्चा।

भाई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हुआ। हमने किशोर कुमार को सेलिब्रेट किया और धमाधम सेलिब्रेट किया। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया और किशोर कुमार की याद को हम नमन करते हैं। किशोर दास जिंदाबाद।

के लिए त्रिवेणी में आपका स्वागत है। तो आज बातें माँ की। जैसे ही माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे सामने एक ममतामयी मूरत आ जाती है, एक ऐसा रिश्ता जिसको हमने भगवान का दर्जा दिया है, इतने ऊपर स्थापित कर दिया है कि उनसे कभी इंसानों वाली गलतियों की अपेक्षा ही नहीं की जाती। माँ यानी जिसे बच्चे के हंसने, रोने, खाने पीने, डरने, सोने जागने और पूरे दिलो दिमाग का पता होना चाहिए। माँ कभी इस मामले में गलत हो ही नहीं सकती, और अगर वो कभी बच्चे की भावना को ना समझ पाए तो मानो कहर ही टूट पड़ता है, क्योंकि माँ को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, है ना?

माओं पर बच्चों को पूरी तरह जानने का ऐसा दबाव होता है कि माँ खुद को माँ कम बच्चों के पीछे लगा सीआईडी एजेंट ज्यादा समझने लगती है। ऐसा हो भी क्यों ना, बच्चे की हर गलती या आहत भावनाओं के लिए माँ ही जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। वहीं अगर बच्चा कोई बात न मानता दिखे तो भी अधिकांश मामलों में माँ ही उसे बिगाड़ने की जिम्मेदार समझी जाती है। इस दबाव का नतीजा ही है कि माएं बच्चों की हर गतिविधि पर किसी जासूस की तरह नजर रखना अपना धर्म समझती हैं। फिर बच्चे के दोस्तों के नाम हो, उनके घर का पता हो या बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट, बच्चे के टिफिन, बोतल, बैग, कपड़े और उनकी पूरी जिंदगी ही माँ की नजरों के स्कैनर से होकर गुजरती है। एक उम्र तक तो ये सब ठीक भी लगता है, लेकिन जब बच्चे युवा हों तब यही बातें उन्हें परेशान करने लगती हैं। इस तरह बच्चों की जिंदगी में मंडराते रहने वाली माओं को हेलीकॉप्टर मॉम की उपाधि भी दी गई है।

बच्चों की जिंदगी में पेरेंट्स की ज्यादा दखल बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करती है, लेकिन यहाँ समझना ये है कि माओं को हर बात पता होने के दबाव ही अक्सर उन्हें इस तरह दखल देते रहने के लिए प्रेरित करता है। पर सामाजिक ढांचे में इन दिनों बदलाव भी हुआ है। कामकाजी जोड़े होने के कारण इन दिनों घर के पुरुष भी हर काम में हाथ बटाते हैं और कहीं कहीं तो पिता भी अब सामाजिक रूप से तय माँ की भूमिका में अपना हिस्सा निभाते हैं। वो बच्चों को नहलाना, डायपर बदलना, सफाई करना, घुमाना, खिलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, टिफिन बना देना जैसे कई काम उनके लिए करते हैं। कहना ही होगा कि इस तरह से परिवार में अभिभावकों का आपस में मिलकर काम करना दोनों को ही बच्चों के करीब लाता है। बच्चा भी परिवार में अपने माता पिता को एक टीम की तरह काम करते देख दोनों के साथ समान रूप से जुड़ता है और पिता से केवल डरने या उनका सम्मान करते रहने की बजाय गले लगने और अपने दिल की बात कहने का हौसला भी पाता है। कहीं न कहीं पिता में भी अब उन्हें माँ की तरह की सहजता मिल रही है।

घर के सदस्य एक टीम बन जाएं, तो जीवन का खेल भी आसान हो जाता है। इसी संदेश के साथ दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाघ जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।

0: सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
1: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
2: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
3: MSMEs have actually benefited.
4: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
5: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
1: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।

0: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
2: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्रीय रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स

0: @hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज़ दलदमरु मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज़ दलदमरु मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
2: आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा प्रादेशिक समाचार बकुला परमार वांचे छे। राज्यना आदिजाति समुदायना गंभीर बीमारीओथी पीड़ाता दर्दीओ माटे राज्य सरकारे अत्यंत संवेदनशील अने कल्याणकारी निर्णय कर्यो छे। आदिवासी परिवारना दर्दीओने जटिल अंगोना प्रत्यारोपण करवा तेमज ते माटे रोबोटिक शस्त्रक्रिया सहितना ऑपरेशनो माटे सहाय आपवा एक विशेष योजना शुरू कराई छे। आ योजनामां किडनी लीवर हृदय अने पेनक्रियाज वगैरेना अंग प्रत्यारोपण तेमज गंभीर रोगोमां अत्याधुनिक रोबोटिक शस्त्रक्रिया माटे नाणाकीय सहाय पूरी पाडवामां आवशे। आ योजनानो मुख्य नियम छे कि दर्दीने आयुष्यमान भारत के मां कार्ड हेठळ मळती सहायने बात कर्या पछी जे वधारानो खर्च बचे ते आ योजनामांथी चूकवामां आवशे। आ नवी योजना माटे सरकारे प्रथम वर्षे 2 करोड़ रूपियानुं बजेट मंजूर कर्युं छे। राज्य सरकारनी आ योजनाना सफळ अमलीकरण माटे अमदावादनी किडनी इन्स्टिट्यूटने नोडल एजन्सी तरीके नियुक्त करवामां आवी छे। भ્રષ્ટાચાર અને નાણાકીય ગેરરીતિ અટકાવવા માટે સમગ્ર પ્રક્રિયા ઓનલાઈન રાખવામાં આવશે। પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિરમાં સોમનાથ દાદાના ચરણોમાં કળા આરાધના મહોત્સવ વંદે સોમનાથનો દિવ્ય પ્રારંભ કરાયો। ગઈકાલે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના દરબારમાં હજારો નર્તક નર્તકીઓ દ્વારા નટરાજ મહાદેવની કળા આરાધના કરવામાં આવી। પ્રાચીન દૈવીય પરંપરા અને ભારતીય નૃત્ય શૈલીઓમાં રહેલા શિવતત્વને પુનઃ ઉજાગર કરવા ગઈકાલથી શરૂ થયેલો આ કાર્યક્રમ 6 તબક્કામાં યોજાશે। નવો કાર્યક્રમ આગામી 10, 17, 14 અને 31 ઓગસ્ટ તથા 7 સપ્ટેમ્બરે યોજાશે, જ્યારે શ્રાવણ માસના દર સોમવારે શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા ચોપાટી મેદાન, પ્રોમોનેડ વોકવે અને સાગર દર્શન ભવન ખાતે નિર્મિત 3 વિશેષ મંચ પર સંગીત, ગાયન અને રોશનીના સમન્વય સાથે કાર્યક્રમ યોજાશે। બરોડા ડેરીના પ્રમુખ તરીકે આજે ફરી એકવાર દિનેશ પટેલની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જ્યારે જીબી સોલંકીની ઉપપ્રમુખ તરીકે વરણી કરવામાં આવી છે। વડોદરા જિલ્લાની સહકારી ક્ષેત્રની અગ્રગણ્ય ગણાતી બરોડા ડેરીની ચૂંટણીના 3 મહિના બાદ પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની નિમણૂક પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે। પ્રદેશ તરફથી સહકારિતા વિભાગના સંયોજક બિપિન પટેલ મેન્ડેટ લઈને આવ્યા હતા, ત્યારબાદ ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી। ભાવનગર રેલવે મંડળે ચાલુ વર્ષે 33 એશિયાઈ સિંહોને સંભવિત રેલ દુર્ઘટનાથી બચાવ્યા છે। વરિષ્ઠ મંડળ વાણિજ્ય પ્રબંધક અતુલ કુમાર ત્રિપાઠીએ જણાવ્યું કે ગયા વર્ષે 129 સિંહોને અકસ્માતથી બચાવાયા હતા। 2 દિવસ અગાઉ પણ 2 લોકો પાયલટ એક માલગાડીનું સંચાલન કરી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન દામનગર લીલીયા મોટા રેલખંડ નજીક રેલવે ટ્રેક

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना फिल्म जालसाज से है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज, किशोर कुमार के साथ आशा भोसले।

और कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मन मंदिर फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गीत राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जादू

0: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने हंसती मुस्कुराती सी प्यारी सी हमारी सखी बैठी है
1: आरती श्रीवास्तव।

0: है, वो उत्सव का समय कितना खास होता है।
1: बिल्कुल, ये जो सावन का महीना होता है ना, पूरा उत्सव से ही भरा होता है।
0: हाँ।
1: बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई जाती हैं, खाए जाते हैं पकवान अच्छे से अच्छे, और साथ ही जो मन होता है ना एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है पानी बरसने की वजह से। हर छोटी छोटी जो जहाँ पे झाड़ियां जो एकदम सूख गई होती हैं, वो भी एकदम हरी भरी हो जाती हैं। और साथ ही जो खासकर जो महिलाएं वगैरह हैं वो इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाती हैं। तरह तरह की उनके कार्यक्रम होते रहते हैं कि आज ऐसे हमें करना है, इस तरह से मनाना है।
0: और पता है, इस मौसम में मन का रेगिस्तान भी हरा हो जाता है और दो प्रेमी दिल भी जवान हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और सावन की खासियत यही है कि आपको हरा भरा कर देता है।
0: बिल्कुल, तो आज के विषय बता दें ताकि हम सावन का आनंद थोड़ा सा और उठा लें।
1: बिल्कुल, आज हम लेके आए हैं विषय, आज हम बात करेंगे अफवाहों से रहें सावधान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अफवाहों की वजह से
0: संबंध खराब हो जाते हैं
1: और जो शांतिपूर्ण माहौल होता है ना वो बिगड़ जाता है।
0: बिल्कुल, और संबंध भी खराब हो जाते हैं जब आप किसी की अफवाह उड़ाते हैं और आपको पता चलता है कि भाई आरती ने मेरे बारे में ये बात कह दी है और वो अफवाह है, तो मेरा तुमसे संबंध खराब होना लाजिमी है।
1: बिल्कुल,
0: है ना, तो ये सब चीजें भी होती है, इसलिए अफवाहों से हमेशा रहें। और कान की कच्चे कहावत है, उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए कि कान के कच्चे कभी ना हो। आपसे किसी ने कोई बात कही या आप कोई बात पहुंची, तो उसके लिए आप उन लोगों से बात करें।
1: बिल्कुल,
0: कि क्या ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ बात हुई है जो इस तरह से माहौल को बदल रही
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, उसकी आप जांचें से परखें। और साथ ही अगर बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे कि कोई कभी कभी होता है ना कि सोशल मीडिया पे हम कोई चीज मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सब करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए,
0: रखना पड़ता,
1: क्योंकि ये जो चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: और आज हम वैसे बात करेंगे मुहावरों के लिए, मुहावरों की दुनिया में आज हम बात करेंगे। एक से 21 होना,
0: अरे 1 से 11 होना तो हमने सुना है,
1: ये अलग है,
0: 1 से 21 होना और भी बड़ी बात है।
1: बिल्कुल,
0: तो चलिए इस पर, ये हमारे श्रोता हमारी सखी और सखा इस पर विचार भेजेंगे।
1: बिल्कुल, वो अपने विचार भेजें कि वो इस मुहावरे को किस तरह से समझते हैं,
0: देखते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही वो किस तरह से इसको अपने जीवन में उतारते हैं, वो क्या समझते हैं इस चीज से, इस मुहावरे से। और साथ ही हम बात करेंगे हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत बचपन की जो यादगार हमारी शरारत होती है। वैसे तो बचपन ही यादगार रहता है पूरा, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी होती है ना जो हमें बिल्कुल याद रह जाती है।
0: तो और कई बार हमारे माता पिता भी बताते हैं कि पता है जब ये छोटी थी, ये जब छोटा था तो बचपन में ऐसे करता था, इसने ऐसे कर दिया, है ना। तो बच्चों की बहुत सारी शरारतें हमें याद रह जाती हैं।
1: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अपने अपने आप शरारतें हमें बिल्कुल साझा करने में हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि हम उसको सबके साथ में बातें करेंगे, हम भी अपनी शरारतें बताएंगे, तो अच्छा लगता है ना एक दूसरे के बारे में जानना।
0: यहाँ आरती में एक बात कह देना चाहती हूँ श्रोताओं से, हमारी सखियों और सखाओं से, कि वो बचपन की यादगार शरारत पर बंद नहीं लिखा कि भी बचपन में शरारत करते हैं, ये नहीं। आपने क्या शरारत की, आपको याद है या आपके बच्चे क्या शरारत करते हैं,
1: बिल्कुल
0: ये आप लिख सकते हैं।
1: अपना अपना बचपन या अपने बच्चों का बचपन, आप किसी का भी, या अपने पोते पोतियों का बचपन,
0: या
1: कुछ
0: आपके पड़ोस के बच्चे हैं, या कोई आपके घर में बच्चा आया है उसकी कोई याद आपको कि वो बच्चा इतना शरारती था और अब देखिए

0: बड़ा होकर इतना डिसेंट बन गया है ना।
1: जी बिल्कुल। और आज हम सखी विशेष के अंतर्गत बात करेंगे मल्लिका सदानी जी की, जो संस्थापक हैं मॉम्स कंपनी की, उनके बारे में बात करेंगे।
0: इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब सावन
1: को एंजॉय, ओ आनंद उठाते हैं।
0: हाँ चले करें।
1: बिल्कुल।

0: तो कितना प्यारा गीत, सावन तो आ गया है। और खैर, सावन का इंतजार हम सभी को रहता भी है। और जब मौसम की बात चल रही थी तो हमें लगा कि आरती का जो चेहरा है वो बिल्कुल गुलाबी हो गया था। सावन की
1: जी
0: फुहारों से बहुत ही खुश नजर आ रही थी।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है आरती, कि हम प्रकृति से बहुत खुश होते हैं, प्रकृति
1: बिल्कुल
0: के माहौल में रमे होते हैं, लेकिन अचानक कई बार हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें जिंदगी में हमने सुन ली हैं, या कुछ ऐसी बातों से घिर गए हैं जो सच नहीं होती हैं, झूठ के करीब होती हैं, जिन्हें
1: बिल्कुल
0: हम अफवाह का नाम भी दे सकते हैं,
1: जी
0: तो और हम दुखी भी हो जाते हैं।

0: बिल्कुल
1: कि अरे हम किस
0: जी
1: दुनिया में फंस गए, या ये क्या हम सुन रहे हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में,
0: बिल्कुल
1: तो हमारा मन थोड़ा सा उद्वेलित हो जाता है।
0: बिल्कुल। और वैसे भी ये जो युग है वो संचार का युग है, और मोबाइल फोन हो या सोशल मीडिया हो, और इससे कोई भी जानकारी जो है वो छुपी नहीं रहती है, और पल भर में कोई भी जानकारी हो, चाहे वो सच हो या झूठ हो, पूरी दुनिया में फैल जाती है। और लेकिन इस आधुनिक सुविधा के साथ में एक बड़ी समस्या ये भी है कि हम जो अफवाहें उससे बच नहीं पाते हैं। हमें जितनी सुविधा मिलती है फोन फोन के जरिए, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन वो पहुंच कभी कभी जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली भी बन जाती है, क्योंकि उससे अफवाहें फैलने का डर रहता है, और अफवाहें जब फैलती हैं तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, कुछ कभी कभी दंगे भड़क जाते हैं या उस तरीके की
1: हाँ,
0: चीजें होती हैं,
1: बिल्कुल
0: जो
1: सही कहा
0: ऐसे
1: आपने
0: हादसे हो जाते हैं।
1: कि बिना सत्यता के जो फैलाई गई झूठी या भ्रामक जो जानकारियां हैं, वो केवल न केवल लोगों को भ्रमित करती हैं, बल्कि कई बार हमारे मन में भय, तनाव, हिंसा और अविश्वास का कारण भी बन जाती है। और अफवाहें जो है अक्सर जो है आधी अधूरी जानकारी कहें, या झूठे संदेश हैं, या संपादित तस्वीरें हैं, या पुराने वीडियो हैं, या मनगढ़ंत कहानियों के रूप में फैलाई जाती है।
0: बिल्कुल। और इस तरह से उनको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो पहली नजर में हमें एकदम सच लगती हैं, और लोग बिना जांच पड़ताल किए इन्हें आगे भेज देते हैं, और देखते ही देखते एक झूठ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो समाज की एकता और आपसी विश्वास को भी कमजोर करती हैं।
1: बिल्कुल, कई बार किसी व्यक्ति की बात करें, समुदाय की या संस्था के बारे में जब गलत जानकारी फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था का या आर्थिक मामलों से जुड़ी अफवाहें लोगों में घबराहट और गलत निर्णयों को जन्म भी दे सकती हैं। आरती,
0: बिल्कुल। और इस डिजिटल युग में देश के हर नागरिक की अपनी खुद की एक जिम्मेदारी है कि वो एक जागरूक और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता बने। कोई भी संदेश, वीडियो या समाचार मिलने पर उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय उसके स्रोत की विश्वसनीयता को अच्छी तरीके से आप पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसको आप आगे भेजें।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अगर किसी समाचार की पुष्टि विश्वसनीय समाचार माध्यमों से या संबंधित सरकारी विभागों से नहीं होती है, तो उसे आगे नहीं भेजना है। हम क्या करते हैं, तुरंत आगे भेज देते हैं। हमें लगता
0: बिल्कुल
1: है पता नहीं हम क्या भेजकर क्या संदेश दे देंगे या क्या क्रांति ऐसी बना देंगे,
0: जी
1: लेकिन सनसनी फैलाने वाले जो शीर्षक हैं, भावनात्मक संदेश हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं और विश्वसनीय समाचार स्रोत हैं, उनसे हम पुष्टि करें कि भाई ये जो न्यूज़ है, ये जो समाचार है, ये जो संदेश हमें भेजा गया है, वो सही है भी या नहीं।
0: बिल्कुल। और क्योंकि ये भ्रामक जो खबरें होती हैं उससे समाज में डर फैलता है, अराजकता, और साथ ही कई बार कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि किस तरह से हम उस जगह को शांति उसको बना के रखें। तो जरूरी है कि हम इस तरीके की अफवाहों से बचें और फैलाने का काम ना करें उनको।
1: हाँ, आपको पता है इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। हम
0: जी
1: इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हमें पसंद भी है कि हम एक अच्छा माहौल अपने आसपास बना के रखें, लेकिन इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत पैदा हो जाती है लोगों के
0: बिल्कुल
1: मनों में। इससे हमें बहुत बचना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी सावधानी जो है समाज को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है।
0: जी
1: इसलिए न तो खुद अफवाहों पर विश्वास करें और न ही इन्हें फैलाने का हम खुद माध्यम बने। और जो भ्रामक खबरें हमें मिलती हैं, उससे समाज में डर और अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी है। कई बार ऐसी बातें कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा कर देती है।
0: बिल्कुल। और हमारे जो साथी हैं वो भी बहुत कुछ लिख रहे हैं इसके बारे में। तो हम एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाले अफवाहें फैलती नहीं है, अपितु तो ऐसा लगता है कि वो फैलाई जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है, और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का प्रयोग करना चाहिए, और उसके अनुसार ही आचरण करना अपेक्षित है, और ऐसी अफवाहों से बचना ही श्रेयकर है।
1: बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी खबर या संदेश को आगे भेजने से पहले उनके विश्वसनीय स्रोत की जांच जरूर करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अफवाहें अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा कर देती हैं। इनसे दूर रहकर मानसिक शांति बनी रह सकती है। एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से हमें बचना चाहिए। गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जेल या जुर्माना हो सकता है।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि सावधान रहिए, और किसी भी संदेश या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। सरकारी वेबसाइट्स या भरोसेमंद समाचार चैनल की जानकारी की सत्यता परखें, और बिना सोचे समझे किसी भी बात पर गुस्सा ना करें या डरें नहीं। जिस खबर के सच होने का पक्का सबूत हो और

0: ना हो उसको आगे ना भेजें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सावधान रहने लगते हैं तो स्थिति जटिल हो जाती है। ज्यादा सावधानी रखना आपको परेशान भी करता है और आपको चिंता भी देता है। लेकिन हाँ, अफवाहों से रहें सावधान भाई। सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाली अफवाहें फैलती नहीं, अपितु ऐसा लगता है कि वो फैलाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपने बौद्धिक क्षमता के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी जो कहते हैं कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, और जो अफवाहें हैं वो अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा करती हैं, और एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से बचना चाहिए, और गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानून अपराध है जिसके लिए जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा है। तो हमारे श्रोताओं ने अपनी राय हम तक पहुंचाई और वाकई अफवाहें फैलाना बहुत ही बड़ा एक अपराध है जो समाज में गलत माहौल पैदा कर देता है। चलिए, हम तो गीत संगीत के जरिए एक अच्छा माहौल पैदा करते हैं।
0: हाँ,
1: इस कार्यक्रम
0: बिल्कुल,
1: में
0: गीत सुनते हैं।

0: लगता है आरती आज तुम पूरी तरह से सावन में भिगोने वाली हो। सावन की जो बरसात है वो स्टूडियो में भी होने लग रही है ना
1: जी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है सखी विशेष, जिसके अंतर्गत हम किसी एक महिला की बात करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्लिका सदानी जी की।
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम किसी एक महिला की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन इस एक महिला के बहाने हम उन हजारों महिलाओं को सैल्यूट भी कर लेते हैं जो इस तरह से अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही महिला

0: के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बेटी को स्किन की बीमारी से बचाने के लिए, यानी अपनी अपनी बेटी को त्वचा की बीमारी से बचाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की, और आज वो कंपनी करोड़ों की बन गई है। इन्होंने ये बात सच कर दिखाई है कि जब बच्चों के ऊपर कुछ परेशानी आती है तो माँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़कर रास्ता निकाल लेती है।
1: क्या बात है, बहुत खूब बात कही आपने। और माँ तो हर
0: जी
1: तकलीफ की दवा है, माँ से बड़ा कौन हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मी मलिका सदानी की, एक सैन्य परिवार में थी वो पली बड़ी। मलिका का जो जीवन था आर्थिक अनुशासन से बंधा हुआ था, और उनके पिता जो एक मेजर जनरल थे, उन्होंने उनमें एकाग्रता और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति का संचार किया, और गृहिणी माँ ने शिक्षा को सर्वोपरि माना भी।
0: जी और उन्होंने राजस्थान के कोटा से 12वीं की, और उसके बाद फिर पुणे के कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वो एमबीए करने मुंबई चली गई, और एमबीए करने के बाद एक जाने माने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद 2008 में उनकी शादी मोहित सदानी से हुई, और शादी के बाद वो पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई।
1: हाँ, लेकिन जब उनकी बेटी 1 साल की थी तब साल 2012 में वो इंडिया वापस भी आ गई। भारत पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी को अति संवेदनशील त्वचा होने की वजह से समस्याएं होने लगी हैं, और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लंदन से ही उत्पाद मंगवाए, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था।
0: जी और क्योंकि लंदन से आने वाले को ढूंढना, दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जब उनकी बेटी जो थी, उसका छोटी बेटी का जन्म हुआ, तब उसे सांस की बीमारी होने के कारण कई उत्पादों का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी,
1: अरे हाँ,
0: और अपनी बेटी के लिए उन्होंने कई सारे उत्पादों को परख कर देखा जिनमें खुशबू ना आती हो, जिनकी खुशबू उनकी बेटी को के उनकी बीमारी को और ना बढ़ाए,
1: हाँ
0: इस
1: बिल्कुल
0: तरीके
1: सही
0: के।
1: कहा। हाँ,
0: जी
1: और हालांकि उन्हें ऐसे उत्पाद नहीं मिले, लेकिन उन्होंने खुद नए उत्पाद बनाने का निर्णय ले लिया ऐसी स्थिति में, और ऐसे उत्पाद जिनमें हानिकारक रसायन नहीं हो और जो बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित हो। इसके लिए उन्होंने लगातार शोध करना शुरू किया, साथ ही इस शोध कार्य के लिए वो दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों से भी मिली।
0: बिल्कुल, और लगातार शोध और वैज्ञानिकों के सुझाव को प्राप्त करने में उन्हें 2 साल का समय लग गया, और साल 2016 में उन्होंने अपने पति के साथ स्किन केयर ब्रांड की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा था अमीशी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदलकर द मॉम्स कंपनी कर दिया गया। और उनकी कंपनी के द्वारा बच्चों की स्किन को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें हानिकारक रसायन ना हो।
1: जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो ना।
0: जी बिल्कुल, और ताकि बच्चों की जो स्किन है, जो उनकी त्वचा है, जो बहुत ज्यादा एकदम मासूम त्वचा होती है, वो प्रभावित ना हो। मलिका सदानी को उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए अनेक सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख हैं टाइम्स शी अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर, और साथ ही मॉम्स कंपनी को फोर्ब्स इंडिया बेस्ट D2C ब्रांड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
1: क्या बात है। और महिला मल्लिका सदानी का जो बैंकर से एक सफल उद्यमी का सफर था वो आसान नहीं था आरती, इतना मुश्किल काम था। और पहले से जो ब्रांड्स थे उनके बीच अपनी पहचान बनाने जैसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन इन सब के बाद भी सफल महिला उद्यमी का खिताब उनके नाम हुआ, और आज उनका नाम देश की सफल महिलाओं में लिया जाता है, और आज वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है।
0: बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी।

0: स्टार से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती तुम चौंक गई ना?
3: क्योंकि गीत गीत गीत गीत आप एकदम से आपने मुझे चौंका दिया।
2: हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण संदेश था जिसे हमें बजाना बहुत जरूरी था, और हमने सोचा पहले इसे बजा लेते हैं और अब सुनते हैं गीत।
3: जी।

0: अब मंदाकिनी जी एक छोटा सा अंतरा ले लें।
1: बिल्कुल लेते हैं।

0: उत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारी सभी सिक्योर शाखाओं का एक बार फिर से स्वागत है।
1: जी, और अब हम बात करें थोड़ी बचपन की।
0: अरे, बचपन की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं।
1: वो बचपन का जमाना जब हम शरारतें किया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। और आज तो आपने एक इतना खास विषय हमारे श्रोताओं के लिए चुना है कि हल्की फुल्की बातें भी हो जाएंगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी, है ना।
1: और हमारे साथी भी तो कितने अपने बचपन की जो किस्से हैं वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, साझा करें उन्होंने बहुत
0: तो
1: सारे।
0: आपने उनसे अनुरोध किया था ना कि भाई आप इस पर निबंध नहीं लिखेंगे बल्कि ये बताएंगे कि बचपन में हम क्या शरारतें किया करते थे या हमारे बच्चों ने क्या क्या शरारतें की। तो उन्होंने लिखकर आपको दिया है, पढ़ते हैं हम क्या हमारे श्रोता चाहते हैं, आज क्या लिखा है उन्होंने हमारे लिए।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि बचपन की यादगार शरारत। भाई, बचपन तो हर गम से बेगाना होता है और हम उस बेगानेपन में स्वयं को देख भी कहाँ पाते हैं। और वैसे भी कोई भी अभिनेता या और अपने अभिनय को अभिनय करते समय देख भी पाता है भला। अरे, उस काल में ही नहीं अपितु हर काल में अभिनेता के अभिनय को दूसरे ही देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग जब अपने बाल बच्चों के अभिनय को देखते हैं तो उसमें स्वयं को ढूंढते हैं। ये तो सही कह रहे हैं वो।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि अब आप सबको अपने बचपन की दिलचस्प और मजेदार यादगार किस्सा बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं स्कूल जाने से बहुत कतराता था। बड़ी मुश्किल से माँ हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ भी आती तो स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जल्दी से घंटी बजे और छुट्टी हो, बस इस बात का इंतजार रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई, समय जैसे ठहर ही गया, घंटी बजे ना छुट्टी हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं छुट्टी होने से पहले ही बस्ता लेकर चुपके चुपके कक्षा से बाहर निकलता हूँ और स्कूल की घंटी और लकड़ी की हथौड़ी जो जमीन पर पड़ी थी उठाई और अपने स्कूल के बैग में रख के घर ले आया और अपने घर पहुंचकर घंटी निकालकर बजाने लगा। मेरी माँ ने ये सब देखा तो हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है, ये स्कूल की घंटी घर क्यों ले आए। मैंने बताया कि स्कूल की घंटी मतलब छुट्टी हो ही नहीं रही थी, स्कूल वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये बेकार जमीन पर पड़ी थी तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया हूँ। ये सुनते ही माँ ने घंटी की तरह मुझे भी बजाना शुरू कर दिया और घंटी को वापिस स्कूल छोड़कर माँ मेरे द्वारा की गई शरारत के लिए अध्यापकों से क्षमा मांगकर घर को लौट आई।
1: भाई, बहुत बढ़िया शरारत है तो। और हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बचपन में तो हमने काफी शरारतें की हैं, किस किस के बारे में बताऊं। पर एक बार की बात है, मेरी मम्मी हम बच्चों को दादाजी के पास छोड़कर दादी माँ और बुआ के साथ मूवी देखने चली गई और हम लोगों को बचपन से फिल्म देखने का बहुत क्रेज रहा है। बस

0: बार की बात है, मेरी मम्मी हम बच्चों को दादाजी के पास छोड़कर दादी माँ और बुआ के साथ मूवी देखने चली गई, और हम लोगों को बचपन से ही फिल्म देखने का बहुत क्रेज रहा है। बस क्या था, हम लोग दादाजी को परेशान करना हमने शुरू कर दिया। और तो और, मैंने अपनी बुआ का एक दुपट्टा लिया और अपने गले में बांध कर दादाजी को डराने लगी कि अगर मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले जाएंगे तो मैं उससे अपने आप को बांध लूंगी। हालांकि दुपट्टा बहुत ढीला था, ढीला ही बांधता, पर दादाजी तो डर गए। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल मैं तुम लोगों को फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगा। फिर जब मम्मी आई तो मेरे दादाजी बोले, लो संभालो अपने बदमाश बच्चों को। लेकिन दूसरे दिन दादाजी हम लोगों को फिल्म दिखाने ले गए।
1: और वही एक श्रोता लिखते हैं कि साल 1962 के आसपास की बात है, हमारा सुथारी का काम वर्कशॉप हुआ करता था। सभी काम हाथ से मतलब औजारों से किया जाते थे। शीशम की लकड़ी को काटते वक्त जो भूसा यानी पाउडर निकलता था, जो पाउडर निकलता था वो चाय की पत्ती जैसा हुबहू लगता था। हम बच्चे उसे इकट्ठा करके न्यूज़पेपर काटकर भूसे से भरा मस्त पैकिंग जैसे दुकानदार करता है वैसा बना लेते थे। शाम ढलने या अंधेरा होने के समय घर नजदीक के रास्ते पर डाल दिया करते थे। उस रास्ते से जो लोग जाते थे उनकी नजर उस पर पड़ती तो वो चुपके से अपनी थैली में डालकर चल देते थे। तब उन्हें देखकर हमारी खुशी और हंसी का ठिकाना नहीं रहता था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद हमारी शरारत की शिकायत पिताजी तक पहुंच गई। उन्होंने हम सभी बच्चों को साथ बुलाकर कड़ी डांट के साथ जो धुलाई की वो आज भी याद है। भाई पहले तो माता पिता धुलाई कर दिया
0: बिल्कुल आराम से,
1: और बच्चे भी खा लिया करते थे। हमने भी बहुत धुलाई हुई है हमारी भी। लेकिन मुझे याद है कि थोड़े समय बाद हम फिर से बच्चे बन जाते थे। कभी भी नाराज नहीं हुए, ना हमें माता पिता पर कभी गुस्सा आया।
0: बिल्कुल। अब एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की यादगार शरारत मैं भी बता ही देता हूँ। बचपन में मैं और मेरे घर के पास एक चाचा हम उम्र हुआ करते थे। मैंने अपने छोटे भाई के साथ प्लान बनाया कि आज रात में जब चाचा सो जाएंगे तो उनकी चारपाई के पास भूत बनकर जाएंगे और उनको डराएंगे। गर्मी के दिनों में हम अक्सर घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। रात को मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं अपने चेहरे पर लाइट जलाकर आऊंगा, तुम उनकी चारपाई हिला देना, नीचे से लगेगा कि कोई भूत आ गया। लेकिन जैसे ही मैं दूर से सिर्फ अपने चेहरे पर लाइट जलाकर चाचा की चारपाई के पास जाने लगा तो मेरे छोटे भाई ने कोई हरकत नहीं की, वो चुपचाप बैठा रहा। मैं जब पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुमने चारपाई को हिलाया क्यों नहीं, तो छोटे भाई ने कहा कि आपको देखकर मैं खुद ही बहुत डर गया था, लगा कि सच में सामने भूत आ गया है। उस समय उसका डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने लायक था। उस समय मुझे बहुत तेज हंसी आ गई और सच में बचपन की घटना मुझे अभी तक याद है।
1: हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार हम कोई ऐसा स्वांग रच लेते हैं लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं वो डर जाते हैं ना। हाँ एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि हल्की फुल्की बातें, बचपन की यादगार बात ये है कि मैंने एक शर्त की थी बचपन में जो बाद में मुझे और मेरे माता पिता दोनों को ही तकलीफ दे गई। एक जो मेरी गलती नहीं थी, एक जिसमें मेरी गलती थी, तो मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें मेरी गलती ये थी, जिसमें मेरी गलती नहीं थी, वही दोनों बातें बता रही है। उसमें ये हुआ कि मेरे पेट में अचानक से सीटी बजते बजते सीटी घुसे पेट के अंदर, लेकिन मतलब इस तरह का कोई उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई। और एक जिसमें मेरी गलती थी कि मेरे ड्रेस में कुछ मोती लगे हुए थे, तो एक दिन हमें कहीं जाना था, ड्रेस पहनी हुई थी, मम्मी तैयार हो रही थी, और मैंने क्या किया कि ड्रेस की मोती को निकालकर नाक में घुसा लिया और उसके कारण कई प्रकार के मतलब दिक्कत हो गई। नाक के अंदर जाकर वो फंस गया, मोती अटक गया कहीं, और नाक के द्वारा हमें पता चला कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उस समय मेरे माता पिता बहुत डर गए और आज भी मुझे ये बात याद आती है। बच्चे इस तरह का करते थे, पहले पेंसिल घुसा लेते थे, बर्तन नाक के अंदर डाल लेते थे, है ना, सिक्का भी कई बार गिटक जाते थे बच्चे, का 50 पैसे का सिक्का या चवन्नी जिसे हम 25 पैसे कहते थे ना, कई बच्चे निगल गए। ऐसी स्थितियां भी कई बार स्कूल्स में टीचर्स को फेस करनी पड़ती है।
0: तो ये कभी कभी शरारतें बहुत भारी पड़ जाती
1: हैं। हाँ शरारतें भी और कई बार नासमझी में भी बच्चा कर देता है और उसका भुगतान माता पिता को करना पड़ता है।
0: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन की वो बात याद आती है जब हम किसी के बागान और अहाते में फूल फल तोड़ लेते थे। सरकारी जो क्वार्टर होते थे उसमें बहुत सारे बगीचे में फूल लगे होते थे। हम लोग किसी के घर जन्मदिन में गए, सब लोग भीतर में कुछ तैयारी चल कर रहे थे और हम लोगों ने भर भर के फूल तोड़ लिए। अब उन फूलों को कैसे लेकर जाएं, उसे हम लोगों ने क्यारी में ही छुपा दिया। चलने के समय जब हमारे जो गार्जियन जो साथ में थे तो हम उसको नहीं ले पाए। दूसरे दिन बाबूजी जब शाम के टाइम में ऑफिस से लौटे तो उन्होंने शिकायत की, बच्चों ने फलाने जी के यहाँ से बहुत फूल और फल तोड़ के बर्बाद किए हैं। मार तो नहीं पड़े बट डांट बहुत पड़ी, और बाबूजी ने कहा कि तुम लोग कहीं भी ले जाने लायक नहीं हो। उसके बाद से हम कहीं जाते भी कोई जान पहचान फंक्शन में तो एक या दो भाई बहन ही जाते थे, मतलब सब लोग नहीं जाते थे, क्योंकि सारे भाई बहन जब इकट्ठा हो जाते हैं ना

0: तो वो शरारतें शुरू हो जाती
1: है, तांडव हो जाता है एक तरह से सभी बच्चों का। तो और माता पिता वाकई कहते थे कि भी नाक कटा दी तुमने ना,
0: बिल्कुल यही करते हैं ना कि सबको मत लेके जाओ, एक आध सिर्फ
1: लेके जाओ। और उस घर में जो पीछे वाले बच्चे रोआ करते थे ना, वो भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है आरती
0: कि हमें नहीं लेके
1: हमें नहीं लेके गए हैं। और कई बच्चे तो देखा सड़क पर ही लेट जाते थे जिद के कारण, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जहाँ माता पिता बड़े शर्मिंदा होते थे कि बच्चे क्या क्या हरकत कर लेते हैं। लेकिन ये बचपन है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बुआ का घर मेरे घर के ही पास था, उनका बेटा मेरे बराबर ही था, हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक ही स्कूल में नाम लिखा दिया। हम दोनों का ही पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्लास की खिड़की बड़ी और सीधी थोड़ा नीची थी, जब टीचर पढ़ा रही होती थी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके, तब हम दोनों उस खिड़की से बाहर निकल जाते थे, फिर इधर उधर घूमते थे, पकड़े जाने पर डांट खाते थे। वैसे भी हम दोनों अक्सर ऐसे ही बाहर बिना बताए निकलकर घूमा करते और फिर बहुत डांट खाया करते थे। लेकिन अब आपको लगता होगा ना कि वो शरारत आपको महंगी भी पड़ गई होगी, आपने पढ़ाई में ध्यान
0: कभी कभी डांट भी पड़ी होगी, कभी कभी मार भी
1: पड़ी होगी।
0: अच्छा मजाक नहीं, हम लोगों ने बचपन की बातें बहुत की, एक गीत सुने,
1: चलिए सुन लेते हैं।

0: और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: तो हमारे और श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती?
4: बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक पड़ोसी दादाजी के जी घर के बाहर ठेला गाड़ी पर रात को सोते थे। देर रात हम मोहल्ले के बच्चे जो होते थे उनका ठेला गाड़ी धकेल कर दूर छोड़कर आ जाते थे, और सुबह नींद खुलती थी तो दादाजी ठेला गाड़ी वापस धकेल कर घर पर लाते और हमें बहुत ज्यादा बोलते थे।
3: बच्चे मन के सच्चे है ना, यूं ही नहीं कहा गया बच्चे इतनी शरारत करने के बाद। जब कल परसों एक छोटी सी बच्ची से मिली, वो थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज रोती भी आई और जस्ट 5 मिनट बाद वो उतनी ही तेजी से हंसती भी आई। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि देखिए बच्चे वाकई अद्भुत होते हैं, और तभी कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे। उन्हें पता ही नहीं कि अभी मैं पल पहले क्या कर रही थी 2 मिनट पहले और अब मैं किस रूप में आई हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे आज भी याद है, मम्मी जब भी बाहर जाती थी कहीं तो हमें जाने को बोलती थी, लेकिन हम सभी भाई बहन उनके साथ नहीं जाते थे। ऐसा इसलिए कि हम अकेले घर पर रहकर सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ घर घर खेलते थे। लेकिन एक दिन खेल खेल में हमारे पड़ोस के एक बच्चे को मेरे बड़े भैया से आंख में कैंची लग गई। माँ तो घर में थी नहीं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग हॉस्पिटल ले गए। समय रहते इलाज हुआ और आंख बच गई। माँ घर आई और सुना हम सभी भाई बहनों की समूह में कुटाई हुई, लेकिन जब पापा आए तो मेरा भाई जिसकी कैंची लगी थी उसकी एक्स्ट्रा कुटाई हुई। ये बात भी सही है, आज जब ये बातें याद आती है तो उस बच्चे को कैंची लगने वाली बात से दिल धक से रह जाता है।
4: जी बस बहुत ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाती है।
3: हाँ, ये बात तो आरती हमारे साथ भी होती थी कि जब हम खेलते थे और गिर के आते थे तो हमारी माँ 2 थप्पड़ और लगाती थी, कितना मना किया था तुम्हें, फिर भी तुम कहना नहीं मानती।
4: बिल्कुल।
3: तो ये सब चीजें बचपन की हैं। और क्या लिखते हैं श्रोता?
4: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि 2 या 3 में पढ़ रहा था, गांव के खेतों की पगडंडियों से स्कूल का रास्ता था और बड़े भाई साहब के साथ स्कूल जाते थे। माँ ने बताया कि एक बार स्कूल से घर आया तो मेरे दाहिने पैर का नाखून उखड़ा हुआ था और बहते खून को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो तब मैंने अपने तोतले अंदाज में कहा भैया कहे दौड़ तो दौड़ा और गिर गया।
3: बिल्कुल, बचपन में तो गिरना और उठना यही है। और एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, न कोई फिक्र थी ना जिम्मेदारी थी, बस हर वक्त कोई न कोई नई शरारत सूझती रहती थी। आज बचपन की उन्हीं खट्टी मीठी यादों की गलियों में फिर से घूम आते हैं। घंटी बजाओ और भाग जाओ, डिंग डोंग डिच, ये हम सबका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। दोपहर के समय जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था तब दबे पांव किसी के घर जाना, जोर से घंटी बजा देना और फिर सांस रोककर ऐसे भागना जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। छुपकर मकान मालिक का गुस्सा देखना अलग ही रोमांच देता था, और नकली भूत का डर जो था डराना, कंबल या सफेद चादर उड़कर छोटे भाई बहनों को डराना, दोस्तों को डराना, कभी कभी खुद ही उस माहौल से डरकर मम्मी के पीछे छुप जाना, और स्कूल में चौक और डस्टर की चोरी, क्लास खत्म होते ही ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर छुपा देना या रंग बिरंग चौक के जो है जेब में भर लेना, तो लगता है जैसे बहुत बड़ा जो है खजाना हमारे हाथ में लग गया हो। तो ये बचपन की यादें इन्होंने साझा की है।
4: बिल्कुल, अब हम बचपन की यादों से बाहर निकलें, थोड़ा
3: निकलना पड़ेगा और हमें मुहावरों की दुनिया में जाना पड़ेगा।
4: बिल्कुल, क्योंकि हमने आज का मुहावरा रखा था 1 से 21 होना। अब 1 से 11 होना तो हमने बहुत सुना है।
3: बिल्कुल।
4: अब हम लेकर आए 1 से 21 होना।
3: हाँ।
4: तो यानी कि हमने उन्नति करी ना।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
4: ये उन्नति तो है। 1 से 21 होना यानी कि उन्नति करना।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है?
4: हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 1 से 21 होना अर्थ है बढ़ना, उन्नति करना या फलना फूलना, बहुत अधिक प्रगति करना या संख्या लाभ में वृद्धि करना। आम दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसे आशीर्वाद के रूप में, तरक्की के रूप में करते हैं, और जैसे कि तुम पर कृपा बनी रहे, 1 से 21 हो। जब से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है 1 से 21 हो गया है उनका व्यापार, तो यानी कि उन्नति करते जाने को कहते हैं 1 से 21 हो जाना।
3: हाँ, बहुत अच्छा एक मुहावरा आप लेकर आई है हमारे श्रोताओं के लिए। अक्सर क्या होता है, 1 और 11 का तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन 1 21 होने वाली जो बात है, 1 से 21 होना वाला, ये जो बहुत कम प्रयोग में आता है लेकिन इसका जो अर्थ है वो उतना ही गहरा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुहावरे का उपयोग, इस खास मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब 2 चीजों

0: मुकाबला हो और एक चीज दूसरी चीज से हर महीने में श्रेष्ठ हो, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस चीज को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। और हम सबकी जिंदगी में कई बार होता है, लेकिन मेरा कहना है कि इस मुहावरे का उपयोग हमें करना चाहिए जब एक दूसरे के बीच कभी कोई तुलना नहीं करनी हो, बल्कि उसे बढ़कर ही कहना हो, वही कि जब उन्नति करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि 1 से 21 होना, भाई ये भी कोई मुहावरा है? हाँ। और अगर है भी तो पहली बार सुन रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ 1 और 1 11 या फिर 9 2 11 जैसे मुहावरे चलते हैं। यहाँ 1 और 1 11 का तात्पर्य संघ शक्ति से ही है, क्योंकि मतलब कि शक्ति में, यानी कि 1 और 1 मिलता है तो 11 बन जाते हैं, तो वो शक्ति बन जाती है। तो 1 से 21 होना भी आप नया जो मुहावरा है आप सुन लीजिए, नया नहीं है ये, पुराना ही मुहावरा है, लेकिन हमने सुना कम है, ये प्रयोग कम होता है,
0: कम प्रयोग में आता है, इसलिए हमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 1 और 1 11 होना तो हमने सुना है, या हम 9 2 11 भी जानते हैं, लेकिन ये 21 होना क्या है? 1 से 21 होना,
1: जैसे
0: तो मतलब
1: कि 1 है 1 से सीधे हम उछल के 21 पहुंच गए, यानी कि उन्नति कर ली हमने।
0: बिल्कुल सही बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि 1 का 21 हो जाना यानी संख्या स्थिति में बड़ा फायदा होना, उन्नति करना, फलना फूलना या किसी स्थिति में अचानक बहुत सुधार होना, व्यापार में सही फैसला लेने से मोहन का कारोबार कुछ ही दिनों में 1 से 21 हो गया। इन्होंने उसका प्रयोग करके भी बता दिया है, जैसे हम अपनी कॉपी में लिखा करते थे वैसे ही इन्होंने भी बताया है कि ये ऐसे प्रयोग में आता है मुहावरा।
1: एक और साथी जो इसी तरह से बात बता रहे हैं कि इसका मतलब है आशीर्वाद रूप से कहा जाता है इसे, और आप अपने जीवन में खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें, और एक एक मतलब करके आप 21 गुना ज्यादा प्रगति करें, यानी कि और ज्यादा बढ़ोतरी करें।
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुहावरा 1 से 21 होना का अर्थ है बहुत अधिक लाभ होना, तरक्की करना या गिनती में बढ़ जाना। ये मुहावरा गणितीय और व्यवहारिक संख्या बल पर आधारित है, जहाँ संख्या एक अकेलेपन और कमजोरी को दर्शाती है, वही 21 एक बड़ी और शुभ संख्या मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी स्थिति को बहुत कम समय में कई गुना बेहतर कर लेता है तो उसे 1 से 21 होना कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल। और हम और भी हमारे जो साथी हैं वो भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि उन्नति करना इसका मतलब है, आशीर्वाद देने में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि 1 से 21 हो जाए, यानी कि आप अपने जीवन में उन्नति करते रहें। इसी तरीके की बातें लिखी हैं हमारे बाकी साथियों ने भी। अब एक गीत सुने।
0: हाँ, गीत सुनेंगे, लेकिन हमारे श्रोता जो कहना चाह रहे हैं वो कह देते हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा ये आरती।
1: जी बात तो सही कही आपने।
0: तो देखिए, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब एक ही चीज दूसरी चीज से हर महीने में, हर मायने में, महीना लिख रखा है हमारे श्रोता ने, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस बात को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, 1 से 21 होना। और वहीं हमारे श्रोता जिन्होंने अभी हमारा पिछला सेगमेंट था ना, हल्की फुल्की बातें में बचपन की यादगार जो शरारत, उसमें भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी शरारतें अभी तक हमें लिख भेज रहे हैं। वो लिखते हैं, पढ़ दो तुम कहो तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वो लिखते हैं कि हमारी बेटी का भी यही हाल था, एक दिन हमने बहुत कुछ बनाया, ननद आने वाली थी और सबको समझा दिया कि ये सब एकदम सर्व करेंगे तभी पता चलेगा, पर बेटी कहां मानने वाली थी, आते ही बता दिया। और एक बार हम दूध रखकर भूल गए और बर्तन भी थोड़ा जल गया, तो हमने बच्चों से कहा कि पापा को आते ही ऐसी बात नहीं बताएंगे, पर क्या उसने आते ही बताया पापा ऐसा हो गया, और तो और मम्मी को भी ये बताने के लिए उन्होंने मन बना लिया। तो इस तरह की शरारतें हम बचपन में,
1: ये अक्सर ऐसा होता है जब हम बच्चों को कोई बात मना करते हैं ना कि ये बात आपको नहीं कहनी है, तब तो वो जरूर उस बात को कहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शैतानियां तो बहुत है, लेकिन बात है गर्मी की छुट्टियों की, जब हमारे घर के बड़े आराम किया करते थे और हम सब दोस्त पास के एक झरने में नहाने भाग जाते थे, और वहां नहाने के लिए सब अपने कपड़े उतारते, पानी में कूदते, तभी मैं और मेरा दोस्त उनके कपड़े उठा के भाग जाते थे और आधा किलोमीटर उनको दौड़ा दौड़ा के ही कपड़े दिया करते थे।
1: एक छोटा सा एक हमें संदेश भेजा तो वो भी हम पढ़ देते हैं। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था, 6-7 साल का रहा होगा, तो उस समय मैं स्कूल बंक करके, स्कूल को अपने पीरियड छोड़ करके मैं अपने नेबर के हाउस में, अपने पड़ोसी के घर में जाकर छुप जाता था, वहां पे मतलब बैठा रहता था, वहां नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो इस तरीके की शरारतें भी हैं।
0: बाकी बहुत आज मन खुश,
1: और आज वो एंजॉय कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट, सोचिए।
0: अच्छा, आज वो अपना मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया है और बचपन की यादों को भी ताजा कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: बहुत खूब। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आरती, सुन लेते हैं गीत।
1: हाँ।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आरती, अभी देखिए हमारे एक श्रोता लिखती हैं, हमारी सखी, कि आज विषयों पर बढ़िया जानकारियां मधुर गीतों के साथ बढ़िया प्रस्तुति के साथ सखी सहेली कार्यक्रम आपने पेश किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हैं।
3: बिल्कुल। और एक हम अपने साथी का छोटा सा भर देते हैं, उन्होंने अपनी शरारत जो लिखी है, लिखती है कि बचपन की शरारतें कितनी मासूम होती है, इसका सबसे प्यारा किस्सा हमारी बेटी का है। जब वो स्कूल जाती थी तो कई बार बस वाले भैया से कह देती, हमारी छोटी बहन आज स्कूल नहीं जा रही है, आप चलिए। असल में स्कूल बस हमारे घर से थोड़ी दूर एक मोड़ पर आती, हमारी बड़ी बेटी पहले ही वहां पहुंच जाती और हम छोटी बेटी को पीछे पीछे लेकर आते। उसकी ये छोटी सी शरारत हमें बार बार हंसा देती थी और आज भी जब वो याद आती है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आरती, बचपन की जो बातें हैं वो कभी भी हमें हंसा देती हैं और गुदगुदा देती हैं। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और हंसे और गुदगुदाएं, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
3: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
2: नमस्कार।

0: सेल्यूलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: जी थैंक यू।
1: तनिष्ठा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले तो।
2: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले, उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो एलपीज और सीडीज जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीजें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहां आऊंगी उसको लेकर।
1: कितनी मजेदार बात है कि जब आप देख रही थी तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आई, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड दिखा।
2: हाँ जी,
1: है ना। फिर 78 आरपीएम का एक रिकॉर्ड दिखा, फिल्म थी यास्मीन।
2: वाओ,
1: 1955।
2: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
1: जी,
2: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं
1: जी,
2: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया, तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रीयन नहीं हूँ।
1: वाह वाह वाह।
2: क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी।
1: जी जी।
2: हम लोग, मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, केन्या में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में। उसके बाद हम दिल्ली आए, और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज इयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में।

0: किया।
1: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
0: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है क्योंकि वहां से मुझे हर चीज जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने हफीज अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए। और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट मतलब समुन्दर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहां बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री,
1: बिल्कुल
0: फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
1: वो तो मकसद ही सोसाइटी ऑफ
0: बिल्कुल कि
1: वो युवाओं
0: एजुकेशन, हाँ एजुकेशन जो है आप उनको कॉनोसियर्स बनाए, हर कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए
1: जी,
0: लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णामूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
1: क्या बात है,
0: वो एजुकेशन जो है मैं अपने बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ मंडी हाउस और जो विंटर्स, बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है। ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बेसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स, जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया कि वहां आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डेसिका से लेकर ब्रेसों, सब एलन दलों की फिल्में, सब मैंने रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा मतलब आंद्रे वायदा, किशलोव्स्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बम्बई जब आई मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या करूं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूं कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने हाँ। देखा है, तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था, घर में भी कोई गाता था?
0: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से। तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहां। तो मेरे पिताजी वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्डकोर कॉर्पोरेट गए थे और इंजीनियर और कॉर्पोरेट बस। और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था तो वो, इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया। और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी तब हम लोग नैरोबी में रहते थे और किसी के घर, मतलब जहां कोई गा रही थी उनके घर पे, वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी। और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि अरे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ। तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। देखिए आपको म्यूजिक की

0: तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं।
1: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सुनते हैं।
0: क्या बात है, ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था और जयदेव की तर्ज थी। सुनते हैं ये गाना।
2: मैं जिंदगी

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले। वाह
1: या, तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हिरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशल।

0: इस करने के लिए। और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी, और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज कही। उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना
1: मजेदार है ये। हाँ,
0: बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब कि उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है। तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज टू यू नो सी दैट
1: उस समय,
0: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आप का क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी जहां उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई है, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज हम बात करते हैं, जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
1: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूं। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
0: बिल्कुल तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो मुझे
1: वाह वाह वाह,
0: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में, हाँ,

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश है।
0: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: सीरियसली डांसर बनना चाहती थी और मतलब, लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं।
1: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
0: और फिर एनएसडी के बाद मेरे पिताजी हर दो साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी।
1: अच्छा।
0: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी। फिर पापा को मैं कहती थी अरे मॉम पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, जूडी डेंच, एन हैथवे, इन सबके साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहां वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी एमबीए किया जाए,
1: क्योंकि
0: पापा, हाँ पापा ने ऐसा। तो मैं वहां जब गई और उनके काउंसलर से मिली तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए, कहते नहीं नहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
1: आप यहाँ पढ़ो मत।
0: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक देके अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
1: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
0: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था, सो आई वाज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे एमबीए करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो।
1: फिर मामला टल गया।
0: फिर हाँ परमानेंटली मामला टल गया।
1: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
0: हाँ, ऐसा दैट इज द थिंग दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू कीप मेकिंग प्लान्स।
1: राइट।
0: तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई, अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं,
1: बट उस फिल्म का नाम है फुल प्लेट।
0: फुल प्लेट। अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई। इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ जिसको मुझे बनाना है, वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है।
1: और ये बन गई,
0: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं बना दो, और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय।
1: हाँ,
0: तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स हम लोग फ्लोर पे थे।
1: क्या बात है। तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे हाँ, क्या काम करता
0: एक है। एक चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है। नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में, मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है। और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स दी एंड नसीर सर आए और उन्होंने उन सब चीजों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की। और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है।
1: वाह क्या प्यारी बात
0: तो
1: है।
0: मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड। उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था। उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हौर ता हबे।
1: वाह,
0: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था।
1: क्या बात है, क्या बात है। और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोलते,
0: जा हौर ता हबे।
1: वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है। यहाँ एक गाने की जगह बनाई।

0: जाए। अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है,
1: हाँ जी,
0: तो आप सजेशन करता
1: आप, हाँ बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे,
0: हाँ,
1: अलाउद्दीन खान साहब का
0: वो बजा सकते हैं,
1: या
0: माता सरस्वती शारदा, जिसका कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है, और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है और फिर वो फिल्म आलाप में आती है।
1: बिल्कुल,
0: ये सुनते हैं, ये हाँ। समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने के संस्थापक और पंडित रविशंकर
1: शंकर जी को।
0: सुनते हैं माता सरस्वती शारदा।

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं. आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं. पीछे की तरफ केमिस्ट्री है.
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है.
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन. और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द सिनेमा दैट आई वॉज वॉचिंग. और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया.
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी. और हमारी जो टीचर हुआ करती थी, जो फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो एफटीआईआई में भी पढ़ाती थी. वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी. सो आई वॉज सो मच इन लव विथ. और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में. फिलिप जॉते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था.
0: बिल्कुल.
1: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं. और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए. तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिजाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी. लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो. डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो. तो मैंने अपने गुरु जो है

0: तब उनकी बात मानी
1: और एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ती गई। एनएसडी के आपके बैच में कौन कौन लोग थे? आपके बैचमेट्स
0: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में। अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी
1: जी जी,
0: और वहां बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे।
1: वाह वाह।
0: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओह माय गॉड एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी।
1: बिल्कुल।
0: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है। शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आई, फाइनेंशियल दिक्कतें आई। जब बड़े मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका। So it was a very difficult process, but then, like I said, ki I think no pain, no gain.
1: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी। क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
0: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी
1: इससे पहले। बना चुकी
0: इससे पहले हाँ। और
1: नवाज थे उसमें?
0: नवाज था उसमें, और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है। तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे उसको एक्टर्स। तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में। उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी, उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे। नवाज और मैंने एस्को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। हाँ, तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट।
1: क्या हुआ था आपके साथ रूम में?
0: सुपर नेचुरल स्टोरी थी।
1: सुपर नेचुरल,
0: हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस। खैर, देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं बनाऊंगी।
1: Right.
0: मैंने सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब। बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता। मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। सो उसी ने मुझ में ये कीड़ा इंसर्ट किया।
1: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
0: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने।
1: शुरुआती दिक्कतें क्या थी?
0: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म, बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उसके बाद पैंडेमिक आ गई, सब कुछ बंद हो गया। सो लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, बट आई कुडंट डू एनीथिंग विद द फिल्म लेटर। मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम।
1: अभी
0: पता नहीं। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैट अटैट, वो डायरेक्ट किया मैंने। और फुल प्लेट मेरी सेकंड फीचर फिल्म है जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया, वहां मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला। फिर फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला। केरला, मैंने बताया केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की। अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की उस फिल्म की।
1: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
0: बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना।
1: इसका आइडिया कहां से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी है, आपने बताया। बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने, इसका मामला क्या था?
0: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है जो

0: मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था, मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में। पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज के तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है।
1: यहाँ तो पूरी आजादी है।
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहाँ फुल्ली आ गया है,
1: वो कुछ अलग ही रूप में आया है।
0: हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना, मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको और उस हिसाब से आप, तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें। क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है, लेकिन जो गेटकीपर्स हैं जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही है। यहाँ एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: गाना कौन सा होगा?
0: बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों।

0: से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
1: जी है। जी जी, और उन्होंने एनएसजी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके।
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे
0: गाना,
1: क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म।
0: ऑडिशन से मिली थी?
1: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
0: ओहो हो।
1: हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
0: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
1: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया।
0: क्या बात है।
1: कि और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
0: यू हैव टू सिंग।
1: ओके। आमी लाशमोई तुमार चोखे कामोनार फुल जे फोटाई तोगू

फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां

0: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल।
1: हाँ
0: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

शाम की दहलीज पर बैठे हैं तेरे इंतजार में, एक दिया जलता है बुझता है तेरे इंतजार में। पूछती हैं मुझसे अक्सर ये हवाएं तेरा हाल, रास्ते भी थक गए हैं तेरे इंतजार में। आओ आ भी जाओ कि हमने तो जिंदगी लिख दी तेरे इंतजार में। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती।

तो अब टुकड़े संभाले नहीं जाते। कुछ लोगों की हर दौर में पड़ती है जरूरत, कुछ लोग कभी दिल से निकाले नहीं।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। जब दूर तक चलो किसी के साथ तो फिर अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। टूटा हुआ आईना भी किसी ने जोड़ा है क्या, मोहब्बत ने आज तक किसी को छोड़ा है क्या। ये जो सुन रहे हो तुम इतने गौर से मेरी बातें फरियादे, तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है क्या।
1: तुझे

कभी ये दुआ कि वो मेरा है, फकत मेरा, कभी ये डर कि वो मुझसे, कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये इल्तिजा के उसे मिल जाएं सारे जहां की खुशियां, कभी ये खौफ के वो खुश मेरे बिना तो नहीं, कभी ये तमन्ना के बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर के उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश के जमाना हो मुंतजिर उसका, कभी ये वहम के वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरजू के वो जो मांगे मिल जाए, कभी ये वसवसा के उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

0: तराने नए पुराने।
1: विविध भारती पर कार्यक्रम तराने नए पुराने लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: दर बुधवारे रात्रे 8:15 वाग्ये विविध भारती अमदावाद वडोदरा सूरत अने राजकोट पर थी सांभळो।
3: प्रायोजक छे कृषि अने खेडूत कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: जरूर सुनिए पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियम हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
5: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: जूली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राजेश रोशन का संगीत।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

किशोर कुमार की आवाज में नमक हराम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम तराने नए पुराने विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे,
1: विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: ट्वीट की शायद जरूरत ना पड़े।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है।

0: नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है और ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छतों पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार को बनाए रखा है। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार परीक्षण अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत और कम होगी। इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसार नला और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: બ્રો લગ્નની શોપિંગ થઈ?
3: હા, વરસાદમાં.
2: યસ, અને એ પણ પૂજા પ્લસ સાથે ડિઝાઇનર અને સ્પેશિયલ વેડિંગ કલેક્શન પર છે અપ ટુ 50% ઓફ. વિઝિટ પૂજા પ્લસ નવરન સિનેમા રોડ રાવપુરા વડોદરા.

शान की आवाज में आप सुन रहे थे प्यार में कभी कभी फिल्म से ये गीत। विशाल राज कौशल ने इसे लिखा, विशाल सिराज सम्राट का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, तराने नए पुराने।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे तेरे नाम फिल्म का ये गीत, समीर के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। कार्यक्रम तराने नए पुराने विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, कार्यक्रम तराने नए पुराने।

साथियों ने उनके साथ कुछ साथियों की आवाज भी इस गीत में आपने सुनी। मीनाक्षी फिल्म के इस गीत में संगीत AR रहमान का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, तराने नए पुराने।

0: कलयुग फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम तराने नए पुराने विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय,
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई।

मटकी भरी मटकी दधकी भरी मटकी दधकी भरी मटकी ले जात रही डगर बीच आहट सुन आहट सुन आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क।

0: देवदास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। पंडित बिरजू महाराज, कविता सुब्रमण्यम और माधुरी दीक्षित की आवाजें, पंडित बिरजू महाराज के बोल और इन्हीं का संगीत। इसके साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

शाम 6:35 से संध्या रंजन कार्यक्रम सुनेगा और 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वर्षा चौमासा। आज सुनिए चौथी कड़ी, कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल, प्रस्तुति कांचन प्रकाश, संगीत की। शाम 7 से जय माला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। ये न थी हमारी किस्मत, ये झलकी सुन सकते हैं रात 8 से हवा महल के अंतर्गत। लेखन सत्यदेव नारायण सिन्हा का, निर्देशन सीताराम यादव का। 8:15 से नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक और समाचार संध्या 8:45 से रात 9 से कार्यक्रम आपके लिए। आज के फनकार रात 9:30 से सुन सकते हैं। कार्यक्रम आज केंद्रित है पार्श्व गायक फिल्मकार किशोर कुमार पर। छाया गीत 10 से सुनिएगा, 10:30 से ढलती जाए रात, और 11 से सुनिए रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

अब आपको बता देते हैं कल यानी 5 अगस्त 2026 के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 6:05 से वंदनवार, 6:30 से झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रमों का विवरण सुनेंगे। 6:35 से श्री रामचरित मानस में कल सुनिएगा 271वां भाग। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, कल सुनिएगा इसकी 5वीं कड़ी। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल, सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत हम है राही प्यार के कार्यक्रम सुनिएगा 7:30 से और सुबह 8 बजे से समाचार प्रभात, 8:15 से त्रिवेणी, 8:30 से चित्रलोक और 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री काजोल पर। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेलुलॉइड के सितारे अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी सुन सकते हैं, ये पुनः प्रसारण है। 11 बजे से रंग तरंग, 12 बजे से हिंदी में समाचार, 12:05 से यादों की महफिल सुरीला सफर कार्यक्रम सुन सकते हैं दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी और 2:15 से दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का समय 2:30 का, 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम सुनेगा और शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में सुनिए लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण, 5:30 से तराने नए पुराने और 6 बजे से हिंदी में समाचार। छह 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 से संध्या रंजन कार्यक्रम सुन सकते हैं। कल शाम 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वर्षा चौमासा की 5वीं कड़ी सुनिएगा। कलाकार गायिका शुभा मुद्गल है और शाम 7 बजे जयमाला। कल शाम 7:45 पे इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। कल यानी 5 अगस्त को रात 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी चुपके चुपके, लेखन आर के शर्मा का, निर्देशन नीलम चोपड़ा का, 8:15 से चित्रलोक। नौ बजे से आपके लिए आज के फनकार कार्यक्रम कल केंद्रित होगा अभिनेत्री काजोल पर, सुन सकते हैं सुबह रात्रि 9:30 से। छाया गीत 10 बजे से और 10:30 से ढलती जाए रात। ये थे आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम संध्या रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में हम दोनों फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल उद्यानवी के बोल, जयदेव का संगीत, कार्यक्रम संध्या रंजन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। फिल्म गोपी का ये भजन सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: वर्षा चौमासा श्रृंखला की आज की ये चौथी कड़ी है। शुभा जी हमारे साथ हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मेरी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से और समग्र श्रोताओं की ओर से, आज हम किस राग का मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, इसलिए हम बाकी सब तो आप ही बता रही हैं और आप ही जानती भी हैं और समझाएंगी भी हमें, किस राग का चयन कर रहे हैं?
1: अब तक हमने राग शुद्ध मल्हार और मेघ और गौड़ मल्हार के बारे में कुछ चर्चा की, लेकिन एक एक बहुत ही बहुचर्चित, लोकप्रिय, जाना माना एक मल्हार का प्रकार है जो जिसके विषय में हमने अभी तक कुछ नहीं कहा, बल्कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि शायद यही रागांग है, उसे मियां मल्हार कहा जाता है।
0: जी, मियां की मल्हार भी कहते हैं।
1: मियां की मल्हार भी कहते हैं और कहा जाता है कि तानसेन जी द्वारा ये रचित है।
0: मियां तानसेन जी रचना।
1: जी, तो मियां मल्हार के विषय में हमने कुछ नहीं कहा, हालांकि ये बहुत ही लोकप्रिय है और इसमें इसकी विशेषता जो है, मतलब ऐसा लगता है कई बार कि इसमें जो दोनों निषाद लगते हैं वो ही मल्हार का एक प्रतीक बन गए हैं। यदि किसी ने न सीखा हो या केवल सुन सुन के जानकारी हासिल की हो तो शुद्ध मल्हार के जगह ये भी मान सकते हैं कि अगर दोनों निषाद लगाने का जो एक विशेष इसमें जो स्वर संगति है वही शायद मल्हार का प्रतीक बन जाता।
0: जी, और वही मल्हार का रूप है।
1: जी,
0: असली रूप है।
1: जी, तो काफी थाट जन्य ये राग है और इसमें कहा जाता है कि मल्हार का एक अंश मिलता है और कान्हड़ा का भी मिश्रण इसमें मिलता है, और फिर तो वो जो दोनों निषाद लगाने की एक विशेष परंपरा है वो भी उसमें मिलती है।
0: जी।
1: इसमें भी मैंने आपके लिए दो रचनाएं चुनी हैं जिनका साहित्य मुझे बेहद पसंद है।
0: लेकिन शुभा जी, थोड़ा सा राग, ये जो मियां मल्हार या मियां की मल्हार है, उसका थोड़ा चलन भी तो आप बताइए, समझाइए, ताकि आप जिससे कह रही हैं कि ये काफी थाट का राग है, और शुद्ध मल्हार के बारे में आपने कहा था कि वो बिलावल थाट का है, तो ये भी तो कुछ फर्क है और ये फर्क हमारे श्रोता भी समझे
1: जी,
0: तो
1: जरूर वो गाने से ही पता चल जाएगा। तो इसका जो एक मुख्य इसका चलन है वो इस प्रकार है।

0: वाह वाह, ये आरोह अवरोह सुनकर मुझे, चूंकि एक सर्वसामान्य श्रोता के मन की बात है जो मेरे मन की बात है, बोल रे पपीहरा जो गाना है
1: जी
0: वो मुझे याद आया,
1: जी
0: वो इसी राग में निबद्ध
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: सही
0: हम
1: कहा।
0: अभी आपकी बंदिशें सुनेंगे, जो आपने जिक्र किया कि दो बंदिशें सुनाऊंगी
1: तो ये दोनों ही बंदिशें पंडित रामाश्रय झा जी की हैं,
0: जी।
1: और जो धीमे तीन ताल में बंदिश है उसके बोल इस प्रकार हैं। तू क्यों मान करे रे बदरा, तो नायिका पूछ रही है बादल से कि किस बात का अभिमान है तुझे। तू क्यों मान करे रे बदरा, मोह बिरहीन नैन के आगे, मतलब तू देख रहा है कि मेरे बिरही नैन कितना बरस रहे हैं फिर भी तू अभिमान कर रहा है, और क्या जरूरत है तुझे अभी इतना मान करने की। तू बरसे रुत पावस आए, तू तो तभी बरसता है जब
0: जब पावस
1: पावस ऋतु
0: रहता।
1: आती है, वर्षा ऋतु आती है। राम रंग मेरो नैन दिन रैन झरे,
0: वाह वाह वाह वाह, हाँ
1: तो
0: हाँ
1: वियोग की का
0: जी,
1: साहित्य है, और उसमें कितनी सुंदर
0: सुंदर
1: उलाहना दी
0: है
1: है
0: जी
1: बादल
0: जी
1: को कि किस बात का तुम्हें अभिमान है, मेरे नैन तो दिन रैन झरते
0: जी
1: हैं, तुम तो केवल इस वर्षा ऋतु में बरसते हो।
0: जी आपने बात करते हुए कहा कि धीमे धीमे तीन ताल में,
1: जी
0: तो वो कैसा होगा धीमा तीन ताल?

मतलब गति का एक विशेष संबंध है संगीत के साथ, और उससे मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि यही बंदिश यदि हम बढ़ी लय में या तेज गा दें तो उसमें जो भाव है वो शायद एकदम नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। तो अब आपको हम बताते हैं कि देखिए गति से क्या-क्या मजा भी आ सकता है और क्या कहर भी ढा सकता है।

0: अब दूसरी बंदिश के बारे में।
1: जी, ये एक ताल में निबद्ध है, 12 मात्रा का ये ताल है, और मियां मल्हार में तो स्वाभाविक है कि उसी में गुरुजी ने बनाई है ये रचना। और बोल इस प्रकार हैं, बदरिया आई रे गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंके जागी से जरिया। के जो शब्द हैं, जो साहित्य है, उनको एक ही ढंग से लगाना पड़ता है। बाद में आप उसका उसकी बढ़त कर सकते हैं, लेकिन उसे सजाने के लिए, ताकि वो गहने की तरह गढ़ा हुआ लगे, तो वो शब्द आप देखेंगे कि कैसे वो गढ़े गए हैं। बदरिया आई रे गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंके जागी से जरिया। बिजली देख के जो नायिका है वो चौंक गई सेज से। पवन की झकझोर बूंद झमाझम किशोर, राम रंग अटा झरे भीगी अमोल चुनरिया।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

विविध भारती पर कार्यक्रम जयमाला लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

0: जरूर सुनिए पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियम हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
1: भारतीय सेना गीत।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

राहुल देव बर्मन की तर्ज आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोलों के साथ शोले फिल्म के इस गीत में आवाजें किशोर कुमार और मन्ना डे की। जयमाला कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अभिलाषा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम जयमाला विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी लौटते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला।
1: अरे बस बस बस बस, सा पे रुक गया, आगे बढ़।
2: रे
1: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
2: ये बात है तो
1: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: Sarigama, 1, 2, 3, 4.
1: Sarigama, ma sarigama, sarima, magaresa. Sarigama, ma sarigama, sarima, magaresa. Magaresa, magaresa, magaresa, magaresa, magaresa, magaresa, magaresa.
2: मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजों में चुपके चुपके फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम जयमाला विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
3: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपको याद दिला दें कि रोजाना रात 8 हवा महल कार्यक्रम आप सुनते हैं विविध भारती पर, और आज आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत झलकी ये न थी हमारी किस्मत, जिसका लेखन किया है सत्यदेव नारायण सिन्हा ने और निर्देशन है सीताराम यादव का, और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अंदाज फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और आपको ये बता दें कि आज फिल्मकार, गायक और अभिनेता किशोर कुमार का जन्मदिन है। इसी पल को याद करने के लिए हम आज उन्हीं के चुनिंदा गीत आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम जयमाला के अंतर्गत। तो सुनते हैं कार्यक्रम काला की

कल आज और कल फिल्म में के इस गीत में आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, असरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम समाप्त होता है।

हवा महल इस कार्यक्रम में आज आपके लिए लेकर आए हैं झलकी। ये न थी हमारी किस्मत। लेखक सत्यदेव नारायण सिन्हा, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता सीताराम यादव।

0: अजी सुनते हो, मैंने कहा आज रविवार है।
1: जानता हूँ प्रिय कि है आज रविवार, उस दिन तुम कुछ ज्यादा ही करती हो प्यार।
0: अच्छा भला वो क्यों?
1: जिससे दिखाऊं मैं पिक्चर कोई नहीं, या फिर ले जाऊं तुम्हें हाट बाजार, आज के दिन रहती हो तुम ज्यादा उदार।
0: अच्छा अच्छा, अब आप अपनी ये कविता छोड़िए, आज मैं उदार नहीं बिल्कुल उधार हूँ जनाब।
1: वाह उदार, अरे वाह उदार, क्या बात है यार, तुमसे करता है प्यार, हे प्रिय बार बार, क्योंकि प्रिय तुम तो हो।

0: बहुत उधार और देती रहती हो अक्सर मुझको उधार।
1: बस बस श्रीमान, अब बहुत हो गया। सुनिए, परसों आपने कहा था कि इस रविवार को खाना मैं पकाऊंगा और अपनी पाक कला का जौहर तुम्हें दिखाऊंगा। तो जल्दी से आज किचन में पहुंच जाइए और जरा जल्दी से खाना बना डालिए, तब तक मैं ये फिल्मी पत्रिका पढ़ती हूँ।
0: प्रिय, तुमने गजब किया, जो मेरे वादे पे एतबार किया। हे प्रभु, क्या इसलिए आपने मुझे ये एतबार दिया?
1: देखिए देखिए, अब आप किसी तरह बच नहीं सकते। बहानेबाजी करने से काम नहीं चलने वाला। वायदे के अनुसार खाना तो आज आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे

0: आप आए रास्ते पर, बस अब सीधे चले जाइए, किचन का रास्ता बिल्कुल सीधा है।
1: जाता हूँ प्रिय, जल्दी की क्या बात, अभी तो दिन निकला है, हाय हुई नहीं रात।
0: ये अखबार लेकर किचन में नहीं जाया जाता जनाब, जाइए भी। पड़ोस में शर्मा जी हर रविवार को खाना बनाते हैं और आपको आज एक बार खाना बनाना पड़ रहा है तो उसमें भी आनाकानी कर रहे हैं। शर्मा जी की पत्नी रविवार को ठाट से टेलीविजन देखा करती है और समय पर चाय नाश्ता उन्हें ड्राइंग रूम में शर्मा जी पहुंचाया करते हैं। मेरे ऐसे नसीब कहाँ।
1: देखो प्रिय तुम।
0: देखो जी, मुझे ये बार बार प्रिय प्रिय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ,
1: देती हो अगर मुझे वार्निंग तब क्या मैं तुमको कहूँ हाय डार्लिंग।
0: कुछ भी कहिए पर ये प्रिय प्रिय की रट छोड़िए, फिर चाहे डार्लिंग कहिए या।
1: मैं सरकारी कर्मचारी ही नहीं, हिंदी का कवि हूँ मैं, गगन का रवि हूँ मैं।
0: ओफो, भगवान बचाए ऐसे सड़क छाप कवि से। अरे बाबा, मैं समझ गई कि आप क्या हैं। मैं तो आपकी इस निगोड़ी कविता के मारे परेशान हो गई हूँ।
1: अरे ये क्या कहती हो मेरी रानी, सुनकर आंखों में भर आता पानी, हाय हाय मेरी कदर किसी ने ना जानी।
0: ओफो, आप सिर्फ बातें बनाते रहेंगे या खाना भी बनाएंगे? अब आप किचन में जाइए, जाइए ना प्लीज।
1: जाता हूँ, अभी खाना बनाता हूँ, पर जाने से पहले एक कविता सुनाता हूँ। हाँ तो अर्ज किया है, अर्ज क्या है, दिमाग से कर्ज लिया है, बस यूँ समझिए अपना फर्ज किया है, मानो मरीज से मर्ज लिया है।
0: हे भगवान, लगता है आप खाना नहीं बनाएंगे, बहाने बना रहे हैं। पहले आप किचन में जाकर खाना बनाइए, फिर बाद में अपनी कविता सुनाइएगा।
1: जाता हूँ प्रिय, जाता हूँ।
0: फिर प्रिय का भूत सवार हो गया आप पर।
1: अरे फो, अरे किस अशुभ चीज का नाम लिया तुमने, अब जाता हूँ किचन की ओर। होशियार, खबरदार, कवि कोमल रहे हैं पधार, जिनके आने से किचन में आई है बहार।
0: हे भगवान, आप चुपचाप नहीं रहेंगे?
1: हाँ, किचन की है क्या अजब छटा, कहीं लोटा तो कहीं थाली, कहीं बेलन तो कहीं। देखो मेरी सजनी, कौन आया है असमय।
0: मैं देखती हूँ, आप किचन में अपना काम शुरू कीजिए, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं।
2: हाय दीदी, जाग गई ना?
0: अरे रेणु, कैसे आई अचानक?
2: सोचा आज रविवार है, चलो दीदी और जीजा जी से मिल ले। जीजा जी कहाँ है?
0: किचन में है।
2: किचन में? ये सूरज आज पश्चिम से कैसे उगा?
0: उगा नहीं है, उगाया गया है।
2: अच्छा।
0: तुम्हारे जीजा जी ने वादा किया था इतवार को खाना बनाने का, वही वादा निभा रहे हैं।
2: अच्छा, चलो तो देखो जरा।
1: अरे इश्क ने गालिबन कमा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के।
2: वाह जीजा जी, आप भी तो आप आज भी काम के। तभी ना दीदी को छुट्टी के दिन खाना बनाकर खिलाने की तैयारी में लगे हैं।
1: अरे रेनू रेनू रेनू, अरे तुम कब आई?
2: बस अभी आ ही रही हूँ। दीदी ने बताया कि आज आप किचन में अपना जौहर दिखला रहे हैं, तो यहाँ चली आई।
1: अच्छा किया जो तुम आई, अरे तुम आए मेरे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम अपने घर को कभी तुमको दे दे दे देखते हैं।
2: वाह जीजा जी वाह, आपकी शायरी का जवाब नहीं, मगर जनाब शायरी या कविता कामिनी का आह्वान किचन किंग बनकर नहीं किया जा सकता।
1: किया जा सकता है मेरी रेनू, आज तो

0: जिब्वा की पंक्तियां जिब्वा पर आ रही है, कहो तो उठाकर बाल से लिख दूं, झुकाकर डाल से लिख दूं, कहो तो मानस कर जाकर कमल के फूल के ऊपर तुम्हारा नाम प्यारा है, महज इस ख्याल से लिख दूं। ताली ताली है।
1: वाह जीजा जी वाह, जवाब नहीं आपका। अब आप कविता कामिनी का सहयोग किचन में खाना बनाने में लीजिए, तब तक मैं और दीदी ड्राइंग रूम में टीवी पर फिल्म देखते हैं।
0: हाँ देखो देखो फिल्म टीवी पर, मगर पास पड़ोस में जाकर कह दो कोई कवि कोमल आज बना रहा है रसोई।
1: ठीक है ठीक है, मैं सारे मोहल्ले में जाकर कह आती हूँ, आप अपना खाना बनाना चालू कीजिए।
0: शुरू शुरू शुरू। अरे सुनती हो मेरी रजनी, अरे सुनती हो मेरी सजनी, अरे जरा आओ मेरी सजनी।
2: अब क्या हो गया, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप, जरा भी चैन से बैठ नहीं पाती, कहिए।
0: बच्ची खुपिए बोलो जरा धीरे, मैं पूछ रहा था कि कहाँ रखे हैं जीरे।
2: आपने आपने फिर प्रिय कहा, मैं कह देती हूँ।
0: अच्छा मैं तुम्हें प्रिय कहूँ या फिर मैं।
2: अरे बाबा जो जी में आए वो कहिए, पर अब जाइए जल्दी से खाना बनाइए, घंटा भर हो आया और अभी कुछ हुआ नहीं। उस सफेद रंग के डिब्बे में जीरे रखे हैं।
0: अच्छा अब जाती कहाँ हो प्राण प्रिय।
2: ओफो मैं तो तंग आ गई आपके इस बेतुकी बकबक से, भगवान जाने कविता का नशा कब उतरेगा।
0: इस कला को तुम कैसी हो नशा, एक कवि की हुई ये कैसी दुर्दशा।
1: दीदी जीजा जी पर आज कविता का भूत सवार हो गया है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि चलो पड़ोस में मिसेस सिन्हा के यहाँ बैठ कर टीवी पर फिल्म देखो। घंटे डेढ़ घंटे बाद जीजा जी जब खाना बना लेंगे तो क्यों?
2: हाँ
1: मजा भी आएगा।
2: हाँ ये ठीक रहेगा, चलो
0: चलो चलो। अरे अरे अरे अरे कैसी है तुम्हारे इस किचन की चमक, नजर नहीं आता किधर है नमक नमक नमक।
1: लाल रंग के छोटे डब्बे में रखा है, जरा अंदाज से डालिएगा कहीं ज्यादा ना हो जाए। अच्छा मैं रेडू जा रहे हैं,

0: जी, बन गया आपका खाना।
1: आओ आओ पिए, खाए हम संग संग खाना, और खाते खाते गाए हम कोई फिल्मी दो गाना।
0: मुझे नहीं आता कोई गाना वाना, और अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कृपया शांत रहें। अब इस कविता के चोले को उतार दीजिए।
1: मैं कवि हूँ, मर्द हूँ, बर्फ हूँ, सर्द हूँ, तड़प हूँ, दर्द हूँ, तड़क हूँ, मर्द हूँ।
0: बस बस बस, समझ गई आप क्या हैं। क्यों जी, आप घर में दिन भर प्रिय प्रिय की रट लगाए रहते हैं, क्या दफ्तर में भी आप इसी तरह मुझे याद करते हैं?
1: हाय, आता जब याद साहब का चेहरा, कैदी पर हो जैसे कोई पहरा, याद तेरी भीतर घुसने नहीं पाती, दरवाजे पर ठहरा हो जो चपरासी।
0: अच्छा अच्छा, अब आप खाना खाइए, आज तो आपसे बात करना भी गुनाह है, ढंग से तो बात कर ही नहीं रहे। ये सब्जी है, एक ही में कई तरह के स्वाद, नमक भी है और चीनी भी, खट्टा भी है और तीता भी। हे भगवान, क्या आपने किचन में रखे सारे मसालों को इसमें डाल दिया है? बस कमी है तो सिर्फ एक किरासन तेल की, दो चार बूंद टपका देते तो मजा आ जाता।
1: अरे मत तुड़ाओ एक टिपका यू मजाक, चुपचाप खा लो, मैंने बनाया है जो साग। गुस्ताखी माफ।
0: और ये रोटियां बनाई हैं आपने, कहीं पर कच्ची हैं तो कहीं पर जली हुई, कहते थे मुझे खाना बनाना आता है।
1: रोटियां देखने में भुरभुरी, खाना

0: करती है ये कुर कुर कुर कुरी,
1: और खाते ही बदन में आएगी सर सर सर सरी।
0: अरे वाह प्रिय माँ, अरे तुमने मेरे दिल में दीपक जला दिया। अरे आज मैंने जाना कि तुम भी हो कवित्री, मैं हूँ सत्यवान, हाय डार्लिंग तुम हो मेरी सावित्री।
1: रहने दीजिए अपनी ये निगोड़ी कला अपने पास, मुझे नहीं बनना कवियत्री।
0: अरे अरे गुस्से में तुम लगती हो आग, जैसे हो मिर्ची की साग। अब घर से कवि को मर जाओ भाग, कहता है मेरे मन का काग।
1: अरे वाह वाह, आप कहाँ भागेंगे, भाग तो मैं रही हूँ, अब मुझसे नहीं खाया जाता ये खाना।
0: मत जाओ प्रिय इस तरह, तुम दिल मेरा तोड़कर, कहता हूँ प्रिय, अरे मैं ये दोनों हाथ जोड़कर।
1: अब जैसा किया वैसा भुगतिए, आप खुद खाइए अपना बनाया स्पेशल खाना।
0: प्रिय तुम छोड़ना मत खाना, समझेगा क्या ये जालिम जमाना, हाय तुमने ये ना जाना, प्रिय तुम छोड़ना मत खाना।
1: अब आप कविता गुनगुनाइए और ये खाना खाइए, आपके इस बकबक से तो मैं परेशान हो गई, मैं तो चली अब किसी अच्छे होटल में खाना खाने।
0: जाओ प्रिय जाओ, तुम होटल में खाओ और देखो कोई पिक्चर सुहाना, मैं यहाँ बैठ के अकेले गाऊंगा फिल्मी दो।

ये न थी हमारी किस्मत, ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। लेखक सत्यदेव नारायण सिन्हा, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता सीताराम यादव। आकाशवाणी पटना की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम संपन्न होता है।

विशाल भारद्वाज की आवाज में आप सुन रहे थे निका संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे पटाखा फिल्म से हमने आपको सुनवाया गुलजार के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चित्रलोक, और अब आपको सुनवाते हैं विशाल भारद्वाज का संगीतबद्ध किया ये अगला गीत इश्किया फिल्म के। इस गीत में आवाजें सुखविंदर सिंह और मीका की, बोल गुलजार के।

0: इश्किया फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, सुखविंदर सिंह और मीका की आवाजें, गुलजार के बोल, विशाल भारद्वाज का संगीत।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, जिसमें आज गीत सुनवा रहे हैं विशाल भारद्वाज की फिल्मों से। फिल्मकार, संगीतकार, गायक विशाल भारद्वाज का आज है जन्मदिन।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक। और अंतराल में जाने से पहले हमने आपको सुनवाया था मटरू की बिजली का मंडोला फिल्म से गीत, जिसमें आवाजें आपने सुनी रेखा भारद्वाज, शंकर महादेवन और मोहित चौहान की। गुलजार के बोल विशाल भारद्वाज का संगीत। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: हिट डाउन।

सात खून माफ। इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे उषा उत्थुप और रेखा भारद्वाज की आवाजें, गुलजार के बोल विशाल भारद्वाज का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर चित्रलोक।

कमीने फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहित चौहान की आवाज, गुलजार के बोल, विशाल भारद्वाज का संगीत। और विशाल भारद्वाज के संगीत से सजा एक और गीत सुन लेते हैं जिसे लिखा गुलजार ने है, सुनिधि चौहान और क्लिंटन सरजू की आवाजें, एक थी डायन फिल्म से। सुनिए ये गीत।

इसके साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में समाचार अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए

0: प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश।

0: देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि ये संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
1: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।

0: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आई। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।
3: वो झरोके

0: चला जाऊं।
1: श्रीमान फंटूश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, असद भोपाली के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

झुमरू फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और किशोर कुमार का ही संगीत। कार्यक्रम आपके लिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे झुमरू फिल्म, माफ कीजिएगा, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गीत, जिसमें लता मंगेशकर की आवाज भी उनके साथ और आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम आपके लिए विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाएं उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय
0: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: हर रोज शाम सुनिए सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है विको वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: सुनवाते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गीत।

जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम आपके लिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, फिल्म आन मिलो सजना।

आनमिलो सजना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और आज का ये संगीत का सफर आपने तय किया अपने दोस्त नेहा शर्मा के साथ। अब दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पाली की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। ये फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलील दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

किशोरदा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए, उन्हीं पर फिल्माया गया

किशोरदा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर दा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में

कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया। इनमें से कुछ के नाम हैं: दूर गगन की छाव में, दूर का राही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हरफन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोरदा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोरदा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोरदा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोरदा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सबसे गहरा प्यार वो होता है जब जिसे चाहो उसे खबर ही ना हो। सबसे सुनहरे प्यार का सफर वो होता है जब कभी जिसे चाहा उसे इजहार ही न किया जाए। जिसे चाहो उसे खबर ही ना हो कि कोई प्यार करता है उससे। आत्मा से उपजा सबसे पवित्र प्यार वही होता है जब नदी के दो किनारों की तरह एक साथ दूर दूर चलते रहो, निहारते रहो, लेकिन मिलन की तमन्ना ना हो और पता ही ना हो उसे कि कोई बड़ी शिद्दत से करता है प्यार।

0: नीले आकाश में जैसे हरा रंग घुल मिल गया है। नदी लयबद्ध होकर गुनगुना रही है। आज चिनार के पेड़ पर बैठी चिड़िया महीन महीन आवाज में कुछ नई बोली बोल रही है। पहाड़ों पर जब गिरी बर्फ तो मन उड़ चला बर्फीली वादियों में। वादी में गूंजा प्यार का तराना लहरों में जैसे जादुई संगीत है।
1: चल के तेरी आंखों से

तुम्हारी तरह और कोई प्यारा नहीं लगता। तुम्हारे होने से जिंदगी के तमाम लम्हे खुशगवार हो जाते हैं। तुम्हारे इंतजार में बगीचे में गिरी पत्तियों को हथेली पर लेकर हवा में उड़ाया है कई बार। खिलते फूलों को देखकर मुस्कुराकर अपनी हथेली पर लिखा है तुम्हारा नाम। गिरी हुई पत्तियों और फूलों को बटोरकर बनाया है गलीचा और उस पर बैठकर गिनी है घड़ियां तुम्हारे आने की।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। दिल ढूंढता है वो लाल फूल जिसे देखकर तुम्हारा चेहरा लाल हो जाए। दिल वो नगमा ढूंढता है जो तुम्हारे लिए गाया जा सके। दिल ढूंढता है वो नदी जिस पर प्यार की कश्ती तिरा दो। दिल ढूंढता है संसार का वो कोना जहां सिर्फ तुम्हारा साथ हो। दिल ढूंढता है वो लम्हा जो सिर्फ तुम्हारे साथ बीते।

0: पानी की सतह पर प्रेम का गुलाबी रंग झिलमिला रहा है लगातार।
1: मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता।

0: सकता मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता।
1: जीवन की इस आपाधापी में बस थोड़ी मोहलत मिल जाए जरा से प्यार के लिए, थोड़ा सा साथ मिल जाए, थोड़ी सी हो गुफ्तगु, थोड़ी सी हो नोक झोंक, थोड़ी हो छेड़छाड़, थोड़ी सी खिलाए मुस्कान, दरकार है मुस्कान की, दरकार है प्यार की, दरकार है फुर्सत के लम्हात की।
2: चला।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: ढलती जाए रात,
3: तुम कितने खुशी हो ये मेरे दिल से तो पूछो, अज तुम

0: समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य

0: सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action against students during the protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a Standard Operating Procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Ministry of Home Affairs said that to strengthen action against fugitives, the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018. It added that India has developed an integrated intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel that sank in the Red Sea off the coast of Yemen today. In a statement, Ministry of External Affairs said, all 13 Indian nationals have been rescued. It said the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Yemeni authorities for the safety and security of the crew. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. It said the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. An Air India flight AI-2379, operating from Phuket to Delhi today, experienced a brief in-flight turbulence-related event during cruise, resulting in a momentary change in altitude. The aircraft landed safely in Delhi, and all passengers and crew have safely disembarked. The aircraft was carrying 137 passengers and 8 crew members. Air India said that of these, 13 passengers and 4 crew members sustained injuries and were taken to hospital for medical evaluation. It also confirmed that there have been no serious injuries as of now. The Election Commission has revised the schedule of